FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बुधवार, शक सम्मत 1948 के आषाढ़ माह की 17 और ईस्वी सन 2026 के जुलाई माह की 8 तारीख। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजे ही कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई है। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7 का समय भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का है 7:30 पर हम ही राही प्यार के और 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आपको सुनवाया जाएगा कार्यक्रम आज के फनकार जो केंद्रित होगा अभिनेता जगदीप पर। सुबह 10 का समय है पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम का। इसमें सुनिए अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत। सुबह 11 रंग तरंग 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। दिन में 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3 का समय सखी सहेली इस कार्यक्रम का है। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षा लेखक हरिशंकर राड़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। शाम 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम 7 कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसके अंतर्गत नाटिका नैहर छूटो जाए। इसके लेखक हैं अरविंद नीमा और निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और रात 9 का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नीतू सिंह पर। रात 10 छाया गीत कार्यक्रम 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 का समय है रंग तरंग कार्यक्रम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान भाग 243।

अत्र ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्र ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्य लोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 243। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, और अब हम आठवीं कड़ी पर पहुंच गए हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि आपका एक बहुत मशहूर गाना है पंचमदा का 1942 लव स्टोरी, और आपने विशाल भारद्वाज के साथ माचिस फिल्म में है बांसुरी की तान, और जुदाई में है, तो ये इतनी सारी फिल्मों में आपने बांसुरी की तान छेड़ी है, कुछ आप इन गानों से जुड़ी, इन फिल्मों से जुड़ी हुई कोई अपनी नायाब यादें ताजा करें, साझा करें।
2: जी, जुदाई फिल्म में दरअसल नदीम श्रवण का म्यूजिक है
1: जी।
2: और

0: जी
1: तो मुखड़ा अपने आप में इतना
0: क्या
1: मुश्किल है।
0: बात है।
1: और हुआ क्यों कि दो तीन बांसुरी वादक गए वहां और वो बजा नहीं पाए, पीस इतना मुश्किल था।
0: जी
1: तो कैलाश मेहता करके एक बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर जो मिनी कॉर्ग में बीन की आवाज निकालते थे, उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। और उसमें कुछ टाफू ब्रदर्स बोलते हैं
0: जी,
1: एक टाफू खान तबला प्लेयर है और एक टाफू ब्रदर जो दूसरा भाई अकॉर्डियन प्लेयर है, तो जो दूसरा भाई है वो आया हुआ था। तो उनके सामने एक ऐसा एक होता है कि हिंदुस्तान की लाज कौन रखे, तो बात अब देश पे आ गई। तो कैलाश ने कहा वो रोनू मजुमदार को बुलाओ, वो ठीक कर देगा सबको।
0: क्या बात है।
1: वो कैलाश ने पता नहीं, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, नीचे से फोन किया, तू करके ही बात करता था मेरे से, तू कहाँ है? मैं बोला कैलाश भाई तू घर पे ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। बोले आजा जल्दी सुदीप स्टूडियो में, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, और तू बता दे इन लोगों को कि तू क्या चीज है। मैंने बोला अरे यार ऐसी क्या बात, हम तो गुलाम अली के साथ इतना काम किया। बोले बस इसीलिए तो बुला रहा हूँ, तूने गुलाम अली जी से वाह वाह ले लिया है तो और क्या चाहिए, गुलाम अली से तो बड़ा नहीं है ना ये।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो मैं स्टूडियो पहुंचा, तो पहुंच के उन्होंने तो 5 मिनट तक तो मुझे अपना हारमोनियम ही सुनाते रहे। मैंने बोला कि इनको सुनना है मुझे कि नहीं, पहले पूछ तो लेना चाहिए, ये क्यों जबरदस्ती क्यों सुना रहे मुझे। फिर मैंने टोक दिया बीच में, मैंने कहा कि मुझे ये सब जो आप बजा रहे हैं ये सब बजाना है क्या, तो ये सब मैं लिखूं? बोले नहीं नहीं आपका पीस तो अलग है। तो मैंने कहा फिर तो वही बताइए ना जो मुझे बजाना है। तो जैसे ही बजा तो मैंने लिखने लगा, तो बोले लिखिए मत। मैंने कहा मैं लिखूंगा जरूर ताकि आप बदल ना सके।
0: क्या बात है।
1: हाँ, लिख लूंगा तो मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि नहीं आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था।
0: जी जी जी।
1: जब उन्होंने पूरा लिखवा दिया, 2 टेक में मैंने बजा दिया।
0: क्या बात है।
1: तब से वो फोन करते थे मुझे, और गुलाम अली भाई तो फोन करते ही थे, उन्होंने भी मेरे नाल पंजाबी च गल करनी। वो कहते सन ओ रोनू भाई ओ दूजा जरा आंदा ओनू पता नहीं पंजाब घराने का, तुसी आओगे तो चंगा रहेगा।
0: क्या बात है।
1: बहुत ही प्यार। तो जुदाई का ये किस्सा, और माचिस का किस्सा मैं खास करके आपको ये बताऊं कि पंचमदा जाने के बाद 3-4 साल के लिए मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। फिल्म लाइन के प्रति मेरा मन उचाट जो बोलते ना एक शब्द है, एक विड्रॉन फीलिंग आ गया था कि मैं फिल्मों में क्यों बजाऊं, मैं अपने सोलो प्रोग्राम करूं वही अच्छा है। फिर फोन आ गया गुलजार साहब का, और गुलजार साहब की आदत है कि कोई बंगाली है तो अपने से छोटा भी है तो उसको दादा ही कहते हैं।
0: अच्छा।
1: आज भी गुलजार साहब मुझे दादा कहते हैं।
0: क्या बात है।
1: वो उनकी बैरूट
0: भारी
1: सी आवाज।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: कहाँ है हुजूर दादा, उनको हम लोग भाई जी कहते हैं इंडस्ट्री में। भाई जी प्रणाम। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और एक नए लड़के को चांस दे रहा हूँ, उसका नाम है विशाल भारद्वाज।
0: जी।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब लगता है कि गाना भी सुनवाना पड़ेगा। हाँ जी,
1: गाना लोगों को सुनाएं, उसके पहले मैं एक बात जी विशाल भारद्वाज जी और गुलजार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने बहुत माचिस से पहले बजाया, मगर कभी स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आया था, और सीडी में उन्होंने क्रेडिट पे मेरा नाम दिया। माचिस का पूरा बैकग्राउंड सब

ला ला ला, सब गाना मैंने बजाया। और बैकग्राउंड में एक यादगार किस्सा है जिसमें टब्बू जो है वो साइनाइड की गोली चंद्रचूड के मुंह में दे रही है, वहां का मेरा बजाया हुआ राग मारवा, उसमें वो किस्सा। मैंने कहा गुलजार साहब इस सीन को मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। उन्होंने कहा दादा आप बजाइए तो सही, ये सीन आपके सामने पनाह मांगेगी। उस सीन को याद करिए।

0: वाह, राग मारवा में ये बांसुरी की तान थी फिल्म माचिस, और अद्भुत, आपने तो जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया पंडित जी। तो अब इसके बाद हम क्या गाना सुनवाएं, या फिर
1: मैं चाहता हूं कि पानी पानी रे इस गाने को लोगों को सुनाइए, क्योंकि उसमें तीन फ्लूट मैंने डबिंग किए थे जो एक साथ अभी बजाना संभव नहीं, तो एक्चुअल जो मैंने बजाया उसको लोग सुन लेंगे तो, और दीदी की वो मखमली और वो शहद से टपकती हुई
0: आवाज,
1: जो लगता है कि माँ सरस्वती गा रही है।

0: रोनुदा, एक गाना है गीत फिल्म का, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, और जब हमारी बात हो रही थी फोन पर तो आपने इसका जिक्र भी किया था। बड़ी सुंदर बांसुरी है उसमें, और बांसुरी वादक का रोल किया है राजेंद्र कुमार ने ना।
1: जी जी जी।
0: तो क्या हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को एक टुकड़ा सुनाएं?
1: उस पीस को हम लोग बहुत सुनते थे, बहुत छोटे थे जब हम लोग।
0: जी जी।
1: तो हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी ने उसको बजाया। उसका जो पीस है वो पंचम को सा करके बसता है।
0: जी जी।
1: तो उसका टेक्निकली भी फ्लूट प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि कैसे वो बजा।

0: वाह, अद्भुत तानसेनी आपने।
1: मुझे भी डर लग रहा था कि वो पीस मुझे याद है कि नहीं। मैं इस पीस को कितने सालों बाद बजा रहा हूँ, मगर शुक्र है कि मैं बजा सका।
0: बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करें, ये जो घड़ी की सुई है ना, ये हम सबको बहुत बाध्य कर देती है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: वज्रदंती,
1: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है कार्यक्रम का वो है दूज का चांद। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम

0: फिल्म को चीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों की आवाजों में, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें।

0: दे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रतन फिल्म का गाना। जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाजें हैं। डीएन मधुक का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत है नौशाद अली का।

रतन फिल्म का गाना आपने सुना जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाजों में। कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए आर पार फिल्म का ये गाना, जिसे गीता दत्त ने गाया है, बजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत तैयार किया है ओपी नैयर ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम बूट पॉलिश।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत है शर्त फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज, संगीत भी हेमंत कुमार का है, गीत एसएच बिहारी का।

0: हेमंत कुमार के गाए इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क

0: ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: प्रस्तुति कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। दीवार फिल्म का गाना सुनिए, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है आर

किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए खेल खेल में इस फिल्म का गाना। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरडी बर्मन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: दोस्तों आज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है, तो हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई खय्याम ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाए जाएंगे एक ब्रेक के बाद।

अंतराल के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अब आपको सुनवाते हैं अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी की बोल है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस कुछ ही पलों में।

0: रहे हैं, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई

0: थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही

0: 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट स्टेरिस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और इसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी

0: अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि हॉर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार्य थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृहमंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। अगला प्रोग्राम त्रिवेणी।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्म समीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपनाकर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और

असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्ममंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आंकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है।

जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्मसमीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता, इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्मसमीक्षा बेहद जरूरी है।

सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में दबंग फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवा रहे हैं, जलीस शेरवानी के बोल और संगीत साजिद वाजिद का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई इस फिल्म से है। मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और संगीत है प्रीतम का।

ब्रेक के बाद लीजिए अब सुनिए आशिकी 2। इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, संदीप नाथ ने इस गीत को लिखा और धुन बनाई अंकित तिवारी ने।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दोस्तों, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है, तो हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। 1960, 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। दो कलियां, ये फिल्म तो आपको याद ही होगी, दोहरी भूमिका इसमें उन्होंने निभाई थी। और इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों के हम नाम ले सकते हैं, यादों की बारात, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर, एंथनी, परवरिश जानी दुश्मन, काला पत्थर, ऐसी कई फिल्मों के नाम इस समय हमें याद आ रहे हैं। तो जन्मदिन की बहुत सारी उन्हें शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम का अगला गाना चीनी कम, इस फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल की आवाज, समीर के बोल और संगीत है इलैयाराजा का।

0: दोस्तों, इस वक्त चित्रलोक कार्यक्रम में हमें जाना है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक पाठशाला। इस फिल्म का गाना तुलसी कुमार, आकांक्षा लामा और हनीफ शेख की आवाजों में, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आइए सुनते हैं रॉय फिल्म का गाना। मीत ब्रदर्स अनजान फिएट और कनिका कपूर की आवाजों में, कुमार के बोल, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम ब्लू।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हो चुके हैं। अगला कार्यक्रम आज का अखबार।
0: आज का अखबार।
3: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं। अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहते हैं और अखबारों से ली गई जानकारी आपसे शेयर करते हैं। आज की अखबारों की बात करें तो आज की अखबारों में तमाम खबरों के साथ साथ एक खबर जो हर अखबार का हिस्सा बनी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा। इससे जुड़ी खबरें हैं, तस्वीरें हैं। भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती को एक नया मोड़ दिया है प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने। नए द्वार खुलेंगे, कुछ बड़ी और अहम बातें हैं आपसे शेयर करते हैं इस प्रोग्राम में, इस यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले

भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इंडोनेशिया ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदेगा भारत से, भारत की मदद लेगा अपने यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के विकास के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से यहां चुनाव करवाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, उस कामकाज को देखते हुए इंडोनेशिया भी अपने यहां चुनाव आयोग की मदद लेगा, अपने पेमेंट सिस्टम यानी इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम को भारत के यूपीआई से जोड़ेगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों कुल 20 समझौते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा रिपब्लिक ऑफ द इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे का डीएनए है और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं, उनको कॉपी करता हूं। और दोस्तों इस तरह से दोनों नेताओं की जुगलबंदी दोस्ती की एक नई

हेडलाइंस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, कारोबार जगत से जुड़ी, खेल जगत से जुड़ी ये हेडलाइंस। अखबारों में हेडलाइंस हैं, गृह मंत्रालय ने कहा कि व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मुनाफे के झांसे में ना आएं, सतर्क रहें। रेलवे में 4098 तकनीकी कर्मचारियों की होगी भर्ती। ओ, 2008 के अहमदाबाद धमाकों में 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा बरकरार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं। देश में मानसून की बात करें तो सक्रिय हुआ मानसून मचा रहा है तबाही। 3-4 दिन व्यापक वर्षा होगी, ये कहना है मौसम विभाग का। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, केरल के वायनाड में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई। और कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर नजर दौड़ाएं तो भारत 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश बना। FDI में भारत ने लगाई 2 पायदान की छलांग, निवेश 44% से बढ़कर $39 अरब पहुंचा। और खेलों की दुनिया से जुड़ी एक खबर है फीफा फुटबॉल कप के बारे में। अर्जेंटीना ने मिस्र, स्पेन ने पुर्तगाल को हराया। 78 मिनट अर्जेंटीना लगातार पीछा कर रही थी, लेकिन 15वें मिनट में 3 गोल दाग कर ये मैच जीत लिया अर्जेंटीना ने मिस्र से। रोनाल्डो ने कहा कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। ये तो थी बाकी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों में। अब बारी फिर से गाने की, गाने के बाद लौटेंगे और खबरें आपसे शेयर करेंगे।

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले पंजाब से जुड़ी खबरों में, पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। पाकिस्तान से ड्रोन से भेजी गई 25 किलो हेरोइन जब्त कर ली गई, 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। बागवानी की बात करें तो पंजाब में बागवानी का रकबा बढ़कर 5.21 लाख हेक्टेयर, ये कहा बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर पंजाब सरकार मोबाइल LED वैन के जरिए 13,000 गांवों में पहुंचाएगी। गुरु रविदास जी की जीवन गाथा, प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश, साल भर चलेंगे विशेष कार्यक्रम। और कनाडा की मॉन्ट्रियल नहर में डूबने से पंजाब के 2 युवकों की जान चली गई, ये युवक हैं बरनाला और अमृतसर जिले से। और मौसम की बात करें तो मानसून पंजाब में 3 दिन में छा जाएगा पूरे राज्य में। अब चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा सरकार ने 341 करोड़ की 13 विकास परियोजनाएं मंजूर की, 15 करोड़ बचाए भी। मिशन दाल, अब बीज से लेकर बुवाई तक एक कमान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 198 खिलाड़ियों को 20.59 करोड़ रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया, अगले माह मिलेंगे 30 करोड़। हरियाणा में पंचायत भूमि पर बने पुराने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक। मुख्यमंत्री ने संत कबीर में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत राज्य स्तरीय जयंती समारोह में कहा कि बाबा मक्खन शाह और बाबा लक्खी शाह का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। ये बात उन्होंने कही संत कबीर कुटीर में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत। और अब चलते हैं हिमाचल की ओर। निरमंड और कुल्लू में बादल फटे, स्मेज में बाढ़ से नुकसान हुआ, पुल बहे, रोहतांग में बर्फबारी। 11

0: जुलाई के लिए हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट बताया गया है, यानी फिर होगी भारी बारिश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कई और सरकारी कार्यालय भी कांगड़ा स्थानांतरित किए जाएंगे। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अब बारी है एक म्यूजिकल ट्रैक की, उसके बाद मिलते हैं लोकल हेडलाइंस लेकर। बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है दोस्तों आज का अखबार में एक बार फिर से आप सभी का। और हम आपको बताएं कि 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि सार्वजनिक स्थलों पर यदि पालतू को घुमाएं तो उसका मल भी खुद उठाएं। जी, ये जो समस्या है आए दिन देखने को मिल रही है कि अपने पालतू को घुमाते हुए जो उसका मल है वो वहीं का वहीं रह जाता है। बस इसके बारे में आपने हमने आपसे विचार जो हैं हमारे से साझे करने हैं। और इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें आपने ये बताना है 10:05 पर। अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा ब्रेक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग

0: बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: लोकल हेडलाइंस के साथ हम आपके साथ हैं. वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की. सबसे पहली एक खबर है जो चंडीगढ़ को शाबाशी देती है कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में चंडीगढ़ देश भर में अव्वल रहा है. सेक्टर 53 हाउसिंग स्कीम पर लग सकता है

शिक्षा गुणवत्ता में चंडीगढ़ देश भर में अव्वल रहा है। सेक्टर 53 हाउसिंग स्कीम पर लग सकता है ताला, 13,000 डिफॉल्टर्स को मिल सकती है राहत। आज होगी सीएचबी बोर्ड की अहम बैठक, 16 एजेंडों पर होगा फैसला। मास्टर प्लान 2031, हाई राइज प्रोजेक्ट और रिवाइवल प्लान पर भी होगी चर्चा। चंडीगढ़ में दो बड़े एनर्जी ड्रिंक गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। शहर में बिक रहे दो बड़े ब्रांड्स के एनर्जी ड्रिंक गुणवत्ता जांच में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। डेंगू की समस्या को देखते हुए पंचकूला में घर घर लार्वा जांचेगी टीमें। चंडीगढ़ में अब जीएसटी चोरी पकड़ेगा सुपर सॉफ्टवेयर। प्रशासन तैयार कर रहा है टैक्स इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, डेटा का मिलान कर पकड़े जाएंगे संदिग्ध कारोबारी। और चंडीगढ़ वासियों के लिए खबर है कि भीगने को रहिए तैयार, 5 दिन बरसेंगे बादल, 1 या 2 दिन भी नहीं, पूरे 5 दिन। चंडीगढ़ में डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करेगा पंजाब और चंडीगढ़ के 12 स्कूलों में एक अनूठा अध्ययन। मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर और खरड़ की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। ट्राई सिटी में बढ़ेगा इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा, यात्रियों का सफर होगा आसान। मोहाली में बनेगा आधुनिक वृद्धाश्रम, 2.92 एकड़ जमीन की गई आवंटित, सेक्टर 78 में बनेगा ये वृद्धाश्रम। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। म्यूजिकल ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

0: और दोस्तों प्रोग्राम में अब आपको एक खबर देते हैं वायु प्रदूषण रोकने को। वैज्ञानिकों ने वायु प्रदूषण रोकने को विकसित की एक अनोखी तकनीक, इसका नाम है स्मार्ट मोबाइल लिक्विड ट्री। ये जो तकनीक है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ती है और शहरी इलाकों में स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने का एक नया विकल्प बन सकती है। ये एक आधुनिक वायु शोधन प्रणाली है जिससे पानी के भीतर मौजूद सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए वातावरण से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। 24 घंटे काम करेगी, धूल भी घटाएगी, सौर ऊर्जा से भी चलेगी, रेलवे स्टेशन बस अड्डों के लिए कारगर है ये तकनीक स्मार्ट मोबाइल लिक्विड ट्री। आवाज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, बस अब से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया

0: एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानंद मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जाँच जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर, जबकि निफ्टी 139 अंक लुढ़ककर 24,260 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं, आपका साथ ही अनिल पुंज। आपसे लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, किसी एक मुद्दे पर बात करेंगे, आपको मालूम ही है। और दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी कुछ समस्याएँ होती हैं जो हमारी खुद की पैदा की होती हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सजगता दिखाएं, थोड़ी सावधानी दिखाएं, अपनापन दिखाएं, और तो मुझे लगता है कि इन स्थलों को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। हमारे घर के बाहर जो फुटपाथ हैं, सड़कों पर फुटपाथ हैं, हमारे जो पार्क हैं हमारे घरों के आसपास, बहुत प्यारे प्यारे हरे भरे, उनके आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखने में जितना प्रशासन का काम है, उससे कहीं ज्यादा हमारा भी है। सफाई को साफ बनाए रखना ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, बल्कि आदत में शामिल होना चाहिए। तो ऐसी ही एक समस्या है कि सार्वजनिक स्थलों पर अपने पालतू को जब हम आसान करवाने के लिए लेकर

0: ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ,
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ,
1: ਓਕੇ ਸਰ।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आज का टॉपिक एक बार फिर से आप सुन लें कि सार्वजनिक स्थलों पर यदि पालतू को घुमाएं तो उसका मल भी खुद उठाएं। देखकर आंखें ना मूंद लें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो अनिल जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी।
3: सर मैं सुशील शर्मा बोल रहा था खेल हिमाचल से।
0: सुशील जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ आप बोलिए।
3: सर हूँ तो मैं प्रॉपर नेटवर्क में।
0: हाँ बिल्कुल सही, अब आवाज सही है आपकी। सुशील जी सोलन से बोल रहे हैं। सोलन कहाँ से सुशील भाई?
3: सोलन से नहीं सर, ठियोग।
0: ठियोग से, उससे भी आगे।
3: जी सर जी।
0: हाँ तो आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में।
3: जी सर जी सर
0: जी।
3: आपसे काफी लगभग 6 महीने पहले बात हुई थी। लगभग
0: इतने दिन कहाँ रहे?
3: थोड़ा व्यस्त था, कुछ घरेलू दिक्कतें थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: बहरहाल विषय पे आते हैं क्योंकि समय कीमती होता सर।
0: जी बताइए
3: सर। बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपने रखा है और आकाशवाणी जो आपका चंडीगढ़ है हमेशा ही इस तरह के मुद्दों को लेकर आता है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर।
0: जी
3: सर, जो ये समस्या है ये तो बड़ी गंभीर समस्या सर, यहाँ शिमला में भी ना।
0: हाँ जी।
3: मैं यहाँ राजधानी की बात करूँ हिमाचल की, मतलब बुरे हाल है सर। कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं लोग लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते सर।
0: जी सही कह रहे हैं,
3: बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ठीक है आप डॉग लवर है, आप कुत्ते को पाल रहे, आप घर में आपका जो है पूरा समय दे रहे कुत्ते के लिए, कुत्ते को पालने के लिए, क्योंकि लोगों ने अब गांव वगैरह में भी गाय वगैरह तो पालना छोड़ दिया और कुत्तों को पालना अपना मतलब गर्व महसूस करते हैं, कुत्ता पाल रहे और गाय पालने में शर्म महसूस कर रहे।
0: जी
3: जी हाँ जी। लेकिन
0: तो सुशील जी बड़ा, हाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा कि गंद डालते हुए जरा सोचते नहीं है।
3: जी सर।
0: फिर शिकायतें करने में सबसे आगे हैं कि वहाँ सफाई नहीं, यहाँ सफाई नहीं है।
3: जी सर जी सर।
0: हाँ प्रशासन ने ये नहीं किया, नगर निगम ने ये नहीं किया, वो नहीं किया।
3: जी सर जी।
0: भाई वो तो एक बार कर गए, एक बार और कर जाएंगे, बाकी तो समय आपने ख्याल रखना ना।
3: नहीं देखते सर बिल्कुल। हाँ। वो तो बिल्कुल अपने कुत्ता घूम, चलो घर में तो चलो व्यक्तिगत वो है जिसने कुत्ता पाला, चलो पे पलंग में रखो।
0: एक,
3: तो
0: एक बात सोचने की सुशील जी, सुशील जी एक बात सोचने की।
3: जी सर।
0: आपके घर के आगे अगर कोई हल्का सा कागज का टुकड़ा भी गिर दे।
3: जी सर जी सर।
0: तो आप उसे भला बुरा कहने लग जाते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना, तमाम बातें करते हैं। जरा सोचिए कि आप हर रोज अपने पालतू को इजी करवाने के लिए जब बाहर ले जाते हैं।
3: जी सर।
0: तो हर रोज आप किसी पार्क के आसपास गन डाल रहे हैं, किसी सड़क पे डाल रहे हैं।
3: जी सर।
0: तो वहाँ आपको जरा सी भी सोच नहीं आती?
3: जी सर जी सर।
0: क्या कर रहे हैं आप?
3: बिल्कुल ये तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि कोई सेंस ही नहीं, सिविक सेंस ही नहीं, नागरिक होने का जो है आप तो बिल्कुल कर्तव्य ही नहीं निभा रहे। आप अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन आपका जो कर्तव्य है आपका जो,
0: आपने अपने पेट को सिर्फ प्यार ही नहीं करना है बल्कि उसकी
3: बिल्कुल,
0: तमाम जिम्मेदारी जो है
3: बिल्कुल,
0: सुबह
3: बिल्कुल,
0: से लेकर रात तक उसे निभाने की आपकी जिम्मेदारी है।
3: यहाँ तो सर शिमला वगैरह ठियोग वगैरह में तो, और जो कुत्ते जो आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा भी होगा या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी है, कुत्तों के काटने की घटनाएं वगैरह, उसमें आम लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं सर।

0: जी
1: नहीं, आज हम कुत्ते कुत्ते काटने की बात नहीं कर रहे हैं।
0: जी सर,
1: वो तो आवारा कुत्तों की परेशानी है ना, जिसका पालतू कुत्ता वो तो जिम्मेदार है अगर उसका कुत्ता काटेगा तो। आज हम बात ये कर रहे हैं कि जब हम अपने पालतू को घुमाते हैं,
0: जी सर,
1: है ना, बहुत प्यार करते हैं,
0: जी सर,
1: तो ये तो भी जिम्मेदारी आपकी है भाई, ये प्रशासन की नहीं है। आप क्यों मजबूर करते हैं?
0: कुत्ता पाला है आप अपने पास से, कुछ ठेला रखो, हाँ, पलों पे पोटी कर रहा है तो उसको उठा लो और उसका।
1: अरे विदेशों में जाते हैं, वहाँ सब कुछ देखते हैं, वहाँ सब कुछ फॉलो करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? बस वही है कि जब तक जुर्माना नहीं लगेगा तब तक नहीं मानेंगे।
0: जी सर, वो तो इंडिया में है ही है सर, जब तक।
1: शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत सुशील जी बात करने के लिए।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत।

0: वेलकम बैक दोस्तों, लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कि सार्वजनिक स्थलों पर, पब्लिक प्लेसेस पर यदि पालतू को घुमाएं तो उसका मल भी खुद उठाएं, छोड़ कर ना आएं। हेलो चंडीगढ़
1: जी, नमस्कार जी।

0: बात जी।
1: जी नमस्कार जी, वेलकम, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
0: हाँ जी, रामवीर बोल रहे जी, किरमत से जी।
1: जी रामवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में, क्या विचार है आपके?
0: देखिए सर, स्वच्छता के बारे में,
1: स्वच्छता के बारे में नहीं है ये, सार्वजनिक स्थलों पर जो लोग अपने
0: तो
1: पेट्स को घुमाते
0: हैं, है ही जी, तो ये स्वच्छता से भी संबंधित है जी सर।
1: अब पहले तो समझाएंगे ना, स्वच्छता बाद में आएगी, पहले समझाएं तो सही, मिलजुल के क्या कहना चाहेंगे कि पालतू को दो बार घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है, बाहर दो बार घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है ना,
0: सुबह शाम।
1: हाँ हाँ, तो देखिए जी,
0: ये देखो पशु पालते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह जानवर पालते हैं, तो ये थोड़ा जिम्मेदारी अपनी ही बनती है जी, कि हम अपने जानवर के साथ कोई बैग वगैरह लेके जाए, अगर कहीं पर उसने कुछ कर दिया है तो उसको उठा के, मल वगैरह को उठाओ और उचित जगह पे डालो, ताकि सफाई रह सके और गंदगी ना फैले और बीमारी ना फैले। सर ये देखिए, वहाँ पर पार्कों में या सड़कों पे बच्चे और बूढ़े या सभी तरह के जो व्यक्ति घूमते हैं, तो पैरों के नीचे जब गंद आएगा तो फैलेगा और इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा हो सकता है सर। तो ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने
1: भाई, एक सीधी सी बात है रामवीर जी, जो आपको बात अपने लिए अच्छी नहीं लगती तो भाई दूसरे के लिए क्यों करते हो? अब आप ही सोचिए, अगर हम में से कोई ऐसे निकले है ना, जिसके पास अपना पालतू कुत्ता है, वो घुमाता है और ऐसे उसका मल वहीं छोड़ आता है, कल को वही निकलता है और अचानक उसका पैर आ जाता है, तो कैसा महसूस होगा?
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, सबके लिए
1: ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटी नहीं है।
0: नहीं जी, समस्या तो बहुत बड़ी है जी, क्योंकि हाँ, अगर व्यक्ति लापरवाही करेंगे तो ऐसे तो गंदगी फैलेगी और ये जो सफाई करने वाले तो कहाँ तक करेगा जी कोई।
1: आप तो उसकी जंजीर हाथ में पकड़ी हुई है, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कोई मालूम नहीं।
0: हाँ जी, उनको दूसरों को क्या मालूम है कि कहाँ क्या हुआ।
1: तो फिर ये जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिए ना, शिकायत करने में तो हम बड़े आगे रहते हैं कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो क्यों ये प्रशासन को मजबूर किया जाए कि भाई जुर्माना लगेगा आपसे जो ऐसे गंद डालेगा?
0: हाँ देखिए सर, ये तो वैसे तो अपना जो एक नागरिक का कर्तव्य है, अपना फर्ज है, वो हमारा फर्ज यही है कि हम अपनी कर्तव्य को निभाएं। तो सबसे पहले तो अगर संविधान में जो देखा जाए तो सबसे पहले अधिकारों से पहले हमारे कर्तव्य जरूरी है, ड्यूटियां जरूरी है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हर एक जगह यही समझाया जाता है कि अधिकारों से पहले हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। और ये जब एक छोटी सी बात है कि हम अपने पशु जानवर को पाल रहे हैं तो प्यार बच्चों से भी ज्यादा करते हैं और परिवार की तरह पाल रहे हैं, तो
1: नहीं भाई, सीधी सी बात तो सीधी सी बात है रामवीर जी।
0: हाँ जी, जी थोड़ा सा और ये कष्ट करोगे उसके सफाई का विशेष ध्यान रखो, जाओ गंद करता है तो उसको उठा के उचित जगह पर फेंको।
1: वही बात कह रहे हैं कि पालतू आपका, प्यार आपका,
0: हाँ जी
1: वो मान लिया, उस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरा परेशान क्यों हो?
0: हाँ जी, ये तो
1: शहर शहर शहर क्यों गंदा हो?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: शुक्रिया रामवीर जी बात करने के लिए,
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
1: हेलो चंद्र,
2: हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी।
1: जी आप रेडियो सेट को थोड़ा सा कर लीजिए, गुड मॉर्निंग, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर मैं फैजान बोल रहा हूँ सर, 77 चंडीगढ़ से।
1: एहसान?
2: फैजान।
1: फैजान,
2: यस
1: फैजान भाई, एहसान करते हैं आप प्यार भरा हम पर फोन करके।
2: नहीं सर, एहसान जाएगा सर, ये तो आप हमारा सर मनोरंजन कराते हो सर, थैंक यू सर,
1: प्यार
2: सर, हमारा अच्छा टाइम पास रहता है सर।
1: नहीं, मैंने एहसान प्यार भरा कहा है
2: जी। तो सर टॉपिक पर आते हैं सर, टॉपिक आज ना, मैं ये चीज सुबह नोटिस कर रहा था सर, मैं बालकनी से खड़ा था और सर कोई मैडम

0: डॉगी को सर जैसे किसी अपने बच्चे को खिलाते, तो सर वो ऐसे खिलाते सर, मैं सर और हर रोज देखता हूँ सर मैडम को
1: जी।
0: सर जैसे ही मैं उठता हूँ सर सुबह, सर वो मैडम मेरे उठने से पहले सर वो बैठी होती है सर पार्क में, और सर वो जो वो लाइट वगैरह सर वो करती है, और करती है सर वो अच्छा फील करती है, और सर वहां से उठ करके और दूसरी चेयर पर सर बैठ जाती है मैडम जाकर के।
1: अच्छा
0: जी सर
1: जी।
0: तो सर मैंने सर उनको तो सर मैंने बोलना नहीं है मैडम को, लेकिन अगर सर वो रेडियो सुन रहे हो तो हो सर तो सर वो इस चीज को समझे बात को।
1: हमारे पीछे लगाया आपने
0: जी सर
1: आप कुछ कह नहीं पा रहे और रेडियो अगर सुनेंगे फिर
0: नहीं सर, अगर वो मैडम सुन रही होंगे तो सर मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करें सर, सर इस टॉपिक को सुन करके।
1: बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए
0: जी सर।
1: ये जो
0: और सर आज आपकी भी सर इस जो आप इस पूरे जोश से सर आप ये टॉपिक पे आप सर वो पूरा अपना उड़ा रहे हो कि हाँ इस चीज को गुस्सा कर रहे हो सर आप।
1: नहीं तो हम तो भी इसी समाज का हिस्सा है भाई मेरे, हम भी आसपास रोज यही देखते हैं
0: जी सर,
1: तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए।
0: जी सर सही बात है सर। सर मैं उसको ना सर जो वो डॉगी को सर इतने बढ़िया से सर प्यार करते हैं ना, तो सर बहुत बढ़िया सर
1: जी। तो प्यार तो सही है, प्यार के साथ साथ उसके प्रति जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है
0: जी सर,
1: है ना। या उसको आदत डाली जाए, किसी एक खास जगह पे उसको आसान किया जाए, वहां से उठा लिया जाए
0: सर
1: उसके मल को।
0: और सर कुछ लोग तो सर स्पेशल सर बाहर ले जाते हैं चीज के लिए।
1: तो जब बाहर लेके जाए, हम वही कह रहे हैं कि बाहर ले जाने पर आप
0: नहीं सर, एक तो सर
1: एक ट्रे रखें अपने साथ,
0: लेकिन सर कुछ लोग स्पेशल लेकर के जाते हैं।
1: हाँ हाँ नहीं, एक आप ट्रे रखें अपने साथ, कुछ उठाने वाली चीज रखें अपने साथ, एक बैग रखें उसमें डालें, और एक जो सही निपटान का एरिया है वहां उसे निपटान कर दें उसका, उसमें क्या बड़ी बात है।
0: यस सर,
1: पर हमारे में ये बात होती ना, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा।
0: नहीं नहीं सर, जब उसको सर पाल रहे तो कोई क्या कहेगा सर।
1: हाँ
0: सर, इससे तो लोग अच्छा मान देंगे, हाँ ये देखो इंसान कितना समझदार है।
1: बल्कि देखने वाला तो ये कहेगा कि देखिए ये कितने सभ्य हैं
0: जी,
1: और कितने
0: समझदार इंसान है, कितना अच्छा है,
1: ये जागरूक हैं, अपने आसपास को गंदा नहीं करते हैं।
0: यस
1: जी। तो फैजान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए प्रोग्राम में, मिलते रहा करो।
0: थैंक यू।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो चुना है कि सार्वजनिक स्थलों पर यदि पालतू को घुमाएं तो उसका मल भी खुद उठाएं। हेलो चंडीगढ़।
3: नमस्कार जी।
1: जी वेलकम, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। नमस्कार,
3: मैं रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर, बुराया डिस्ट्रिक्ट।
1: जी रविंद्र जी।
3: जी जी
1: कहिए जनाब, क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में।
3: तो देखो जी, ऐसी है कि जो भी मतलब कोई भी पेट पालता है तो उसका जो है उसकी जिम्मेवारी तो खुद की बनती है कि वो सफाई रखे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अगर हम किसी के दरवाजे पे ले जाके करवाएंगे तो वो फिर लड़ाई झगड़े का कारण हो जाता है। तो सबको सर चाहिए कि जो भी हम बाहर उनको घुमाने ले जाते हैं, जहाँ तो ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पे पहले कूड़ा करकट हो, तो जहाँ सफाई हुई है वहां पर कभी भी उनको मतलब नहीं ले जाना चाहिए, तो इससे लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है।
1: अब कई बार तो हमने ये देखा है कि रविंद्र जी सुबह सवेरे वो उठे होते हैं, अपनी आंखें पूरी खुली नहीं होती
3: जी जी।
1: अपने पालतू को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं कि जल्दी से वो इजी हो जाए
3: जी जी।
1: जितनी जल्दी हो, जितनी नजदीक हो जाए उतना अच्छा है, घर लौट कर आ जाएं, ये रोज रोज का झंझट बड़ा मुश्किल है
3: जी।

0: बता रहा था पिछले साल की बात है, तो वहां लॉन्ग आइलैंड में अपने मामा जी के 10 दिन रुका, वहां सामने पार्क है, तो मैं रोज वहां सुबह योगा प्राणायाम करता था और वहां देखता बैठ जाता चढ़ के नीचे। बहुत सारे इतने डॉगी लेके आते हैं वहां, वो पार्क हर के हाथ में थैला पकड़ा हुआ है, हर के हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और लिफाफा पकड़ा हुआ है, जैसा वो डाल तो उठाते हैं, जैसे ही वो बैठता है बेचारा इजी होता है करता है अपना, और उसी समय उठा के अपने लिफाफे में साथ ले जाते हैं। ये पूरे हर कंट्री में बाहर ये सिस्टम है, मॉरिशस में देखा 500-500 रुपए जुर्माना वहां का करेंसी में कर रहे हैं वो, वहां पे ऐसा सिस्टम है। चाहता हूं भारत में भी ये होना चाहिए, वैसे तो 100% हमें अपनी खुद अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, अगर कोई करता है ऐसा पकड़ा जाए तो उसको भी जुर्माना लगना चाहिए।
1: तो हम वही कह रहे हैं कि जुर्माने तक बात क्यों आए, अपने आप क्यों नहीं समझते भाई।
0: बिल्कुल
1: जी जी जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि आप तो आपने बताया विदेशों में घूमते रहते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: आपने अलग अलग जगहों पर देखा है, मुझे लगता है कि हर एक
0: फोटो वीडियो बना के लाया हो यहाँ के दिखाने के लिए सब जी।
1: अच्छा
0: मैं मौका जब मिलता है तो दिखा देता हूँ कईयों को भी, ये देख लो बाहर में ऐसा है सिस्टम है, क्योंकि हर साल अमेरिका जाना होता है, हर साल मॉरिशस जर्मनी, तो आर्य समाज के प्रचार में घूमने को मौका मिलता है और बाहर से बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं इस तरह की।
1: जी जी जी, और जो आपका पालतू है
0: हाँ जी,
1: उसे शौच कराने के लिए कुछ बुनियादी नियम हैं, तरीके हैं?
0: बिल्कुल,
1: जैसे स्कूपर अपने साथ रखें या प्लास्टिक का बैग साथ रखें, उसकी गंदगी को तुरंत उठाकर जो नजदीक
0: आते हैं वहां उनको एक हाँ, एक हैबिट बनी हुई, आदत बनी हुई है वहां की। हम चाहता हूं कि भारत वाले भी हर कोई जो लवर है डॉग्स के, उनको भी इस तरह की एक आदत बना लेनी चाहिए, ताकि हमारा भारत, हमारा घर, हमारा पार्क स्वच्छ रहे। बिल्कुल,
1: और ऑनलाइन देखिए डिग्रेडेबल जो है वो पूप बैग भी मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: और बायोडिग्रेडेबल होता है ये जो बैग होता है, ये जो बैग है ये अपने साथ रखें और वाइप करने के लिए वाइपर रखें।
0: बिल्कुल,
1: तो उसे बैग में उठाकर सुरक्षित रूप से कूड़ेदान में फेंक दें। कितनी देर लगती है?
0: बिल्कुल, हर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी का पैर नहीं गंदा होगा, किसी का बदबू नहीं आएगी, बहुत से फायदे हैं इसमें,
1: और
0: अपना भी फायदा है दूसरों का भी फायदा है।
1: और मेजर जी सबसे बड़ी बात, एक मेजर बात ये है
0: कि
1: सही जगह का चुनाव करें,
0: बिल्कुल
1: जो नगर निगम के नियम हैं उनकी पालन करें, उनको
0: हाँ जी,
1: उनको फॉलो करें।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: सर, बिल्कुल
1: इस तरह से बातें हैं जिन पर काम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
0: बिल्कुल, जैसे बाहर जाते हैं सब लोग देखते हैं, उनको यहाँ भारत में भी उसी तरह को फॉलो करना चाहिए।
1: जी, वहां इसलिए फॉलो करते हैं कि विदेशों में के एक तो जुर्माने से डरते हैं,
0: जुर्माना
1: भी थोड़ा नहीं है, भारी भरकम होता है,
0: भारी भरकम होता है, $500 करते हैं सर वहाँ पे, $500।
1: हाँ, तो 500 दिन तो याद रहेगा ना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वहाँ करता ही नहीं, 90% कोई नहीं करता है वहाँ पे, 90%।
1: जी जी जी,
0: ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हर साल देखता हूँ, और मैं जुलाई अगस्त हर साल वहीं रहता हूँ तकरीबन
1: जी,
0: तो वहाँ देखता हूँ वहाँ पे ये बिल्कुल साफ सुथरा पार्क में सैर करने जाते हैं, मजा आता है, आनंद आता है, और 90% लोग डॉगी लेके रस्सी बांध के पक्का घूमते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे को तंग नहीं करता कोई भी हो।
1: जी शुक्रिया मेजर साहब,
0: धन्यवाद
1: आपका प्रोग्राम में बात करने के लिए।
0: बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये सबको शिक्षा देने वाला था टॉपिक आज का ये।
1: जी शिक्षा तो क्या है,
0: घूमते हैं पार्क,
1: बस ये जिम्मेदारी है, इसे अगर निभाया जाए तो देखिए शहर की बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है, वो दूर करना हमारे हाथ में है।
0: ओके, धन्यवाद।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: वेलकम बैक दोस्तों लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम फिर आपके साथ हैं और आज बातें हो रही हैं सार्वजनिक स्थलों पर यदि पालतू को घुमाएं तो उसका मल भी खुद उठाएं नंबर्स हैं हमारे 2660615

0: एक सात और एक नौ। हेलो चंडीगढ़।
1: गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: संगीता डोगरा बोले सर, आजकल जीरकपुर।
0: अच्छा, जीरकपुर आ गए हैं।
1: जी जी सर।
0: चलिए, अच्छी बात है कि आप घूमते फिरते रहते हैं।
1: हाँ जी सर, बस ये अब रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा थोड़ा जीवन में एक्टिविटी रहे।
0: जी, तो आज के टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है?
1: हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि पेट सिर्फ आप डॉग के बारे में बात कर रहे हैं अभी?
0: नहीं, डॉग तो है और भी, जैसे लोगों ने अपने घर में बिल्लियां भी पाली।
1: हाँ जी, हाँ जी, गाय भैंस भी, गाय की बात वो तो चलो।
0: नहीं, गाय गाय जो पालतू है, जो घर में रहती है, वो तो उसका तो निपटान प्रॉपर करते हैं सभी घर में रहते हुए, डेयरी सिस्टम है जिनके यहाँ।
1: बट उनको ना खुला छोड़ देते हैं, ये बड़ी हिमाचल में प्रॉब्लम है। आप निकलो चंडीगढ़ से तो हिमाचल जैसे एंटर होंगे।
0: नहीं, वो तो अकेले घूमती रहती है ना। जो लोग पालतू अपने कुत्ते को घुमाने बाहर ले जाते हैं इजी करवाने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहूंगी
0: आज हम जानवरों का आवारा घूमना उस पीछे पे बात नहीं कर रहे।
1: बिल्कुल ठीक है। हाँ। सर, मैं कहूंगी कि शहरों में तो हम इन पेट्स को तो आज की तरह घर के अंदर रखते हैं। 99% जो बड़ी बड़ी कोठियां नहीं है तो भी अंदर रखते हैं। बट गाँव में ये खुले में है और लोग घर के अंदर है, पूरी प्रोटेक्शन खुले में बैठ के दे रहे हैं। तो ये भी खुले में शौच में जा जाते हैं, खाना पीना भी कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है शहरों में दिक्कत ही है।
0: शहरों में दिक्कत है
1: बिल्कुल। और फॉरेन कल्चर सारी बात करते हैं, मैं जितना भी सुन रही थी कि फॉरेन का तो पनिशमेंट से ही डरते हैं सर, हैवी फाइन से। पर इंडिया में जब डेमोक्रेसी है, एक ऐसी कंट्री है ना, तो सिविक सेंस तो होना एक जरूरी है ना। हम वो ब्लेम गेम करते हैं उसकी बात ना करें। अगर पैट्स रखे या जो खाली प्लॉट है वो तो सर कूड़ादान है और इस काम के लिए है। मैं बताऊं आपको, जब घर बन जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ के इसमें, क्योंकि हमारा भी ये मतलब फ्लैट नहीं है, इंडिपेंडेंट ड्यूप्लेक्स है, तो इसमें साथ में जो प्लॉट खाली है उसको कितनी बार साफ करवाते हैं हम सर। ये ना करें, किसी घर के पास अगर प्लॉट खाली है थोड़ा दूर तक ले जाएं। डॉग और घोड़े को जितना घुमाए, जितना चले, उतनी उसकी लाइफ लंबी होती है
0: जी।
1: तो बजाय कि उनको पास में किसी के प्लॉट में अंधेरे में कूड़ा भी फेंक देना, प्लॉट में डॉगी को भी ले जाना, वो करते हैं लोग सर। मैं ना करें, मैं यहाँ से ये बात बोलना चाहूंगी। आज बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर कि मैं अपने विचार इस रूप में प्रकट करना चाह रही कि किसी के पास
0: अब,
1: में।
0: अब देखिए, अब अगर हम शहरों की बात करें, अपने मोहल्ले की बात करें, हमारे अपने अपने मोहल्लों में
1: जी
0: तकरीबन सबके पास अपने अपने पेट डॉग हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: कईयों ने बिल्लियां भी पाली हुई हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अब बिल्ली को तो घुमाने ऐसे पटा डाल के लेके नहीं जाते, लेकिन पालतू को लेके जाते हैं।
1: बिल्ली साफ सुथरी बहुत होती है सर, वो भी बड़ा ख्याल रखती है। वैसे बिल्ली की मैं बात करूँ ना
0: तो नहीं, समस्या उससे भी होती है, बहुत होती है।
1: समस्या तो होती है सर, कर देती है।
0: तो दूसरी बात ये है कि जब पालतू को घुमाने ले जाते हैं, अब भाई सुबह शाम दो दफा तो जाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: नहीं तो वो तो आपके पीछे पड़ा रहेगा, चलो चलो चलो चलो चलो,
1: बीमार पड़ जाएगा,
0: है ना। आप बाहर उसको लेके जाएंगे और उसको जब इजी करवाएंगे उसको,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो फिर आप चुपके से पहले इधर उधर देखेंगे, कोई देखता तो नहीं।
1: सही बात है सर, वेरी
0: तो बस
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: हो गया काम
1: ऐसा ना, ऐसा
0: लेकिन
1: ना
0: उसके बाद परेशानी उसको है जिसके घर के आगे हो सकता है, सड़क में हो सकता है, किसी का पैर आ गया।
1: हाँ जी, सही बात। हाँ,
0: फिर उससे जो है इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है।
1: हाँ जी, आगे कई प्रॉब्लम, छोटे
0: कई प्रॉब्लम हो सकती
1: हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है।
0: तो यहाँ आज इस टॉपिक पर जो बात हो रही है वो इतनी हो रही है कि ये छोटी सी जिम्मेदारी है,
1: उसे किया जिसका पैसा
0: अपना बैग साथ रखें। हाँ, उसमें डालें और डस्टबिन में डाल दें।
1: बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है सर, जब पेट का शौक है तो फिर उसको क्लीन रखने का और वातावरण को क्लीन रखने की भी जिम्मेदारी बनती है ना, अगर घुमाना वातावरण में।
0: तभी कहते हैं ना कि शौक महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते।
1: बिल्कुल, बहुत महंगे होते हैं, अपना शौक भी महंगा,
0: अपना आप खपाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है।
1: गांव में तो ओपन में जैसे पाल लिया, वो डॉग
0: बाहर, थोड़ी गांव की बात और होती है, साथ जंगल लग रहा है, कहां गया कहां, कुछ पता नहीं है।
1: हाँ जी सर,
0: मोहल्ले में तो सब लोग इकट्ठे,
1: गांव में तो
0: रह रहे हैं ना।
1: गांव में पता क्या कहते हैं, किसी घर जाओ जी, पहले कुत्ता तो नहीं है, बांध लो जी हमें काटे ना कहीं।
0: जी जी,
1: पहला क्वेश्चन ये होता है।
0: जी जी जी, तो चलिए, वो तो काटने का एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज जो टॉपिक है ये बड़ा गंभीर विषय है।
1: मैं आपका थैंक यू करूंगी कि
0: शुक्रिया डोगरा जी, आपका बहुत बहुत।

0: बात करने के लिए।
1: वेलकम सर, नमस्कार सर।
0: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
0: जी, फरमाइए।
2: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, वेलकम
2: सर। मैं प्रदीप बरुण, संकट मोचन शिमला से।
0: जी, जय बजरंग बली की।
2: सर जय सियाराम, जय सियाराम सर।
0: जी, क्या हाल चाल है आपके?
2: बिल्कुल ठीक है सर, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है।
0: हाँ, वही कमाल
2: है। सुहावना बना हुआ है।
0: जी जी जी जी,
2: चारों तरफ हरियाली।
0: हाँ, तभी तो शिमले वाले शिमला छोड़ के नहीं जाते।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो स्वर्ग है सर।
0: कहते नीचे तो बड़ी गर्मी है।
2: जी जी जी जी जी, यहाँ तो सिर्फ कुदरती वो है, ठंडी हवा।
0: नीचे वाले भी ऊपर आते हैं।
2: बिल्कुल सर, खूब टूरिस्टों का काफी रश रहता है।
0: जी जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? ये समस्या तो आपके यहाँ भी होगी।
2: जी जी जी, बिल्कुल है सर, यहाँ पे है जी, बहुत है
0: जी।
2: मतलब ये है कि लोग घुमाने ले जाएंगे अपने पेट्स को, तो बस हर कहीं पर उनको वो करवा देते हैं। अब वो जानवर है, जानवर को क्या पता कि क्या वो है।
0: नहीं, वैसे उसे सिखाया जाए तो सब कुछ सीख जाता है।
2: बिल्कुल सर, वही बात है। और ये बहुत समझदार होता है जानवर।
0: जो ट्रेन

0: चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? ये समस्या तो आपके यहाँ भी होगी।
1: जी जी जी बिल्कुल है सर, यहाँ पे है जी, बहुत है जी, बहुत है
0: जी।
1: मतलब ये है कि लोग घुमाने ले जाएंगे अपने पेट्स को, तो बस हर कहीं पर उनको वो करवा देते हैं। अब वो जानवर है, जानवर को क्या पता कि क्या वो है।
0: नहीं वैसे उसे सिखाया जाए तो सब कुछ सीख जाता है।
1: बिल्कुल सर वही बात है, और ये बहुत समझदार होता है जानवर,
0: जो ट्रेंड होता है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल,
0: वो हर बात को समझता है।
1: मतलब अगर आप उनको एक जगह वो करवाएंगे तो उनको पता लग जाएगा, और जब भी आप उनको घुमाने ले जाएंगे तो वो उसी जगह पे जाएंगे।
0: और ये एक ऐसा कुदरत का नायाब जो है इंसान को एक भेंट है।
1: बिल्कुल सर,
0: कि ये हर मौके को, हर स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से भांपता है।
1: बिल्कुल सर, और ये इंसान का सबसे सच्चा मित्र है ये दोस्त। ये
0: मालिक चाहे आंखें मूंद ले।
1: हाँ बिल्कुल सर, ये मतलब आपको ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब आप उदास क्यों है, क्या वो है, मतलब बहुत ध्यान से देखेंगे आपको ये ना।
0: हाँ तो फिर इतना सब कुछ होते हुए अगर आपको उसे ट्रेन कर दें।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: तो वो बात बन जाती।
1: बिल्कुल सर, मतलब ऐसा है कि जब भी हमें इनको घुमाने ले जाए ना, तो ये है कि सफाई का भी ध्यान रहना चाहिए।
0: जी ये तो जिम्मेदारी आपकी है।
1: बिल्कुल सर, ये हमारी, हम सरकार को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम मतलब एमसी के रूल्स को फॉलो करेंगे तो मतलब ये समस्या नहीं पैदा होगी कभी।
0: जी एमसी के रूल्स तो हैं ही।
1: जी जी जी, अपना भी वो है सर।
0: जी जी जी,
1: अपना भी फर्ज है एक ना,
0: तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है।
1: जी जी सर,
0: और जरूर रखें पालतू, उसे प्यार भी करें, अपनापन भी दें।
1: बिल्कुल, लेकिन सफाई का भी मतलब ध्यान रखें।
0: लेकिन जब घुमाने लेके जाएं, उसे इजी करने के लिए लेके जाएं।
1: जी सर,
0: तो भाई उसका मल जो है वो खुद उठाएं।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही बात है सर, ये
0: इसमें कोई शर्म नहीं है।
1: नहीं सर, कोई आप जानने वाली बात नहीं है, बच्चों की तरह तो उनकी सफाई करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है सर।
0: तो प्रदीप जी नाम बताया ना आपने अपना।
1: जी सर जी सर,
0: जी जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप इस प्रोग्राम में अक्सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर,
0: अक्सर शामिल होते हैं इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सर, थैंक यू,
0: शुक्रिया।

0: तो साथियों, ये तो था आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज टॉपिक रहा सार्वजनिक स्थलों पर यदि पालतू को घुमाएं तो उसका मल भी खुद उठाएं। इस प्रोग्राम पर हमारे श्रोताओं ने इस टॉपिक पर अपने विचार जो हैं व्यक्त किए हैं, और जिम्मेदारी किस तरह से हमारी होनी चाहिए, किस तरह से निभानी चाहिए, इसके बारे में बताया। प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। दिन के 11 बजे ही आप सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बहू है जिसका नाम शशि है। शशि एक गरीब परिवार की है। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। शशि अपने नाम की तरह ही बहुत शांत है। शशि अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है। हर छोटे बड़े काम वो बहुत लगन से करती है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उसकी सास शशि को सम्मान नहीं देती है जो एक बहू को मिलना चाहिए। बस अपनी बड़ी बहू को उसकी गरीबी के ताने सुनाती रहती है। सास और ननद की सोच उस वक्त ज्यादा गिर गई जब शांति देवी अपनी छोटी बेटी की शादी एक अमीर परिवार में कर देते हैं। उनका छोटा बेटा एक सरकारी नौकरी पर काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए शांति जी और उनकी बेटी अंजलि अपने छोटे बेटे विजय और छोटी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती थी। घर का सारा काम शशि यानी बड़ी बहू करती थी। छोटी बहू तो बस सारा दिन फोन और किटी पार्टी और घूमने फिरने में लगी रहती, क्योंकि वह एक अमीर घर से थी तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और विजय ने भी बोल दिया था कि मेरी बीवी को काम करने की आदत नहीं है और ज्यादा परेशानी होती है तो एक नौकरानी रख लो। तब शांति जी ने कहा, नौकरानी की क्या जरूरत है, घर में काम ही कितना है, जो काम वाली रखे, पहले भी तो घर के काम होते थे, अब भी हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटी बहू ही तो ज्यादा हुई है घर में, एक के आ जाने से काम ही कितना होता है, जो अलग से काम वाली रखे। सास और पति के शय पाकर तनुजा अब और भी बेफिक्र हो गई थी और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर काम के लिए दो टुक जवाब दे देती थी। पहले की तरह शशि काम करती रही, किसी से कोई शिकायत ना करती। श्रोताओं, आपको अमीर और गरीब के भेदभाव को दर्शाने

0: हेलो दीदी, कैसे हो आप?
1: हेलो भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। दीदी, कल आपके भतीजे का जन्मदिन है, आप आ सको तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: पर भाभी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, आपके जिया जी को कुछ जरूरी काम है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी।
0: ठीक है दीदी, लेकिन कोशिश करना आने की।
1: देखती हूँ। अच्छा भाभी, बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है।
2: थोड़ी देर में अंजलि अपनी माँ को फोन करती है वहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि घर में कल का क्या प्रोग्राम है।
1: हेलो माँ, कैसी हो आप? घर में सब ठीक है ना?
3: हाँ बेटा, सब ठीक है, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना?
1: माँ, बड़ी भाभी का फोन आया था, बोल रही थी चीकू का जन्मदिन है, जरूर आना। माँ, क्या कोई बड़ी पार्टी रखी है?
3: अरे नहीं बेटा, ये कहाँ बड़ी पार्टी रखेंगे, बस घर में ही केक काटेंगे। तू रहने दे, फालतू में आने जाने का खर्चा ही होगा।
1: हाँ माँ, इसलिए मैंने भी बहाना बना दिया कि आपके जिया जी को जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी।
3: ठीक किया बेटा तूने।
1: हाँ माँ, मेरा भी बिल्कुल भी आने का मन नहीं है, कुछ लेती देती तो है नहीं, बस एक शगुन का लिफाफा पकड़ा देती है और बस खाना खिला देती है। पिछली बार जो साड़ी दी थी वो आउट ऑफ फैशन थी, इससे अच्छा तो वो ना ही देती।
3: तुम ठीक कहती हो बेटी, है भी तो गरीब घर की, उसके घर से तो कुछ आता नहीं, तो क्या पता होगा लेन देन क्या होता है, तू रहने ही दे आने को।
2: और दोनों फोन रखते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन बुआ के इंतजार में चला गया, परंतु बुआ नहीं आई। शशि सारा दिन काम में लगी रहती है पर कभी किसी से शिकायत नहीं करती। और एक दिन शशि की माँ की तबीयत खराब हो गई, शशि अपने मायके चली गई और शांति जी ने अपनी छोटी बहू को काम करने के लिए कहा तो तनुजा ने साफ साफ मना कर दिया।
3: बेटा तनुजा, एक कप चाय बना लो और हाँ, नाश्ता भी बना देना।
0: क्या मैं और नाश्ता बनाऊंगी? ये सब मेरे से नहीं होगा।
3: अरे ये क्या बात हुई, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा?
0: वो मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं बनाऊंगी, बस कह दिया।
4: अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है?
3: अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तो बस तनुजा को इतना ही बोला कि नाश्ता बना लो, पर ये तो मुझे ही धमकाने लगी।
0: देखो विजय, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये काम वाम मैं नहीं करने वाली।
4: अरे माँ, आप इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? माँ, तनुजा नाश्ता नहीं बनाना चाहती तो क्या हुआ, आप भी तो बना सकती हो ना।
3: क्या मैं इस उम्र में काम करूं?
4: तो क्या हुआ माँ, और माँ अगर तुम नहीं बना सकती तो एक काम वाली रख लो, पर ये चिक चिक बंद करो प्लीज।
3: ठीक है बेटा।
2: कुछ दिन बाद जब शशि अपने मायके से घर वापस आती है तो सास को काम करते हुए देखती है। जल्दी से अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करके अपनी सास शांति देवी को मना करती है और खुद सारा काम करने लगती है। सास ये सब देखकर और अपने द्वारा किए गए बर्ताव जो उसने आज तक शशि के साथ किया था उसके लिए शर्मिंदा होती है। अगले महीने शांति जी के छोटे बेटे विजय और बहू तनुजा की शादी की पहली सालगिरह थी। ननद अंजलि बहुत उत्साहित थी कि उसके छोटे भाई और भाभी जरूर कोई बड़ी पार्टी देंगे, परंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया था। अंजलि ने खुद ही अपनी माँ को फोन किया।
1: हेलो माँ, तुम कैसी हो? माँ, छोटी भाई और भाभी की सालगिरह आ रही है, क्या घर में पार्टी नहीं होगी?
3: पता नहीं बेटा, पर मैंने सुना तो था, वो फोन पर होटल बुक करने की बात कर रहे थे।
1: अच्छा, लगता है कोई सरप्राइज पार्टी रखेंगे, मैं तो जरूर आऊंगी, मैंने भाई के लिए शर्ट और भाभी के लिए एक सूट लिया है गिफ्ट के लिए।
2: बिना बुलावे का इंतजार किए अंजलि छोटी भाभी की सालगिरह के लिए अपने मायके पहुंच जाती है और तनुजा के कमरे में जाकर सालगिरह की बधाई देने के लिए जैसे अंजलि ने तनुजा को गले लगाना चाहा, उसने हाथ से रुकने का इशारा किया।
0: अरे अरे दीदी, अभी अभी तो मैं बाल सेट करवा के आई हूँ।
1: ओ सॉरी सॉरी भाभी, आपको शादी की

0: ये सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी आप लोगों ने तो बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं ही आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ गई।
1: थैंक्स दीदी, वो हमने बाहर का प्रोग्राम रखा था तो किसी को बुलाया नहीं। थोड़ी देर में आपके भाई आने वाले हैं, फिर हम दोनों होटल के लिए निकल जाएंगे।
0: हम दोनों? मतलब आप लोगों ने कोई पार्टी नहीं रखी है?
1: दीदी पार्टी तो रखी है, लेकिन हमने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है।
0: और फैमिली?
1: अरे दीदी वो क्या है ना, वहाँ ड्रिंक वगैरह होगा तो फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
0: पर भाभी।
1: और हाँ, हम आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर देंगे, आप सब खा लेना और हमें आने में देर हो जाएगी।
2: तनुजा तुम रेडी होगी या नहीं, जल्दी करो।
1: हाँ मैं रेडी हूँ।
0: पर भाई।
2: क्या हुआ अंजलि?
0: भाई पार्टी तो घर में होनी चाहिए, या सभी को यहीं बुला लो।
2: अंजलि क्या कह रही है तुम?
0: भाई बड़ी भाभी और भैया भी तो घर में ही पार्टी करते हैं और पूरी फैमिली एंजॉय करती है।
2: अरे पूरा साल फैमिली के साथ ही तो रहते हैं, और एक दिन हम बाहर पार्टी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। और हाँ अंजलि, बने बनाए मूड को खराब मत करो।
0: क्या मैं आपका मूड खराब कर रही हूँ? बड़े भाई भाभी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं।
2: अंजलि तुम जाओ, नहीं तो हमें पार्टी के लिए देर हो जाएगी।
0: ठीक है मैं जा रही हूँ। और अंजलि सोचने लगती है और माँ के पास जाकर सारी बात बताती है कि किस प्रकार छोटे भाई और भाभी ने फैमिली के साथ शादी की सालगिरह ना मनाकर दोस्तों के साथ होटल में जाकर पार्टी करना सही समझा। माँ बड़ी भाभी ने तो आज तक परिवार के बिना कभी कोई सालगिरह और कोई जन्मदिन नहीं मनाया। केक भी माँ के हाथों से ही कटवाती है और कितना आदर और सम्मान से बुलाती है। और एक हम है जो उसके बुलाने पर नखरे करते हैं। और छोटी भाभी ने कितनी सहजता से बोल दिया, फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
3: अरे बेटा तेरी बड़ी भाभी ना हो तो कोई हमें रोटी भी ना दे, और एक हम है जो उसकी कदर ही नहीं करते।
0: हाँ माँ तुम ठीक ही कहती हो, आज मैं भी अपनी गलती और बड़ी भाभी के साथ किए हुए व्यवहार से शर्मिंदा हूँ।
4: और तनुजा और छोटा भाई विजय भी तैयार होकर होटल के लिए चले जाते हैं। शांति जी और अंजलि उनका मुंह देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ जाता है, लेकिन उनके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। तभी बड़ी बहू शशि ने आकर पूछा,
5: दीदी माँ आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे, खाना ठंडा हो रहा है।
3: बहू वो मेरे पेट में ना गैस बन रही है, मैं ये भारी तला हुआ खाना नहीं खा सकती। बेटा तुम मेरे लिए दलिया बना दे।
5: जी माँ जी ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ।
0: भाभी मैं भी दलिया ही खाऊंगी, मेरे लिए भी दलिया बना दो, ये खाना बहुत तीखा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा।
4: शशि मुस्कुराते हुए रसोई में गई और दलिया बनाकर ले आई। आज वो दलिया दोनों माँ बेटी को बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसमें शशि का अपनापन और सम्मान जो मिला था।

श्रोताओं, हम किसी की भावना और अपनेपन को दौलत से नहीं माप सकते। शशि गरीब घर की जरूर थी, परंतु उसमें सबके लिए सम्मान की और आदर की भावना थी। हमें कभी भी किसी को उसके पैसे या पुष्

मार्क देकर सम्मान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार और उसके अच्छे कार्य को देखना चाहिए। श्रोताओं, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।

इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, दिन में 11:30 पर संजीवनी प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे आयुर्वेदाचार्य श्वेत खुंगर के साथ, और विषय रहेगा बातचीत का आयुर्वेद और हम। 11:15 हो चुके हैं, अब बारी है प्रोग्राम सुरबहार की। कुछ फिल्मी गैर फिल्मी रचनाएं गीत इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो आइए सबसे पहले MA मिश्रा की आवाज में ये गीत सुना जाए।

0: सुरबहार प्रोग्राम की ये पहली रचना थी एम ए मिश्रा की आवाज में। सुरबहार प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गीत रचनाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: सुरबहार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। नॉन फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और अब बारी है आयुष्मान खुराना की आवाज़ की।

0: अभी आपने आयुष्मान खुराना को सुना?
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: सुरबहर प्रोग्राम के आखिर में एक गजल समाअत फरमाइए। फनकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

0: अभी आपने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को सुना, इसके साथ ही सुरबहर कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग के नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है, अब सुनिए कार्यक्रम संजीवनी। नमस्कार साथियों, संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंच। आपको मालूम है इस प्रोग्राम में हम जब भी आपसे मिलते हैं तो किसी न किसी विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी लड़ी में आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर श्वेत खुंगर। पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर श्वेत खुंगर से हम आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। हमने जो विषय चुना है वो चुना है आयुर्वेद और हम। डॉक्टर श्वेत खुंगर, प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद जी।
0: क्योंकि आयुर्वेद में किस तरह से इलाज होता है किसी खास बीमारी को लेकर, उसके बारे में तो इस प्रोग्राम में अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन असल में आयुर्वेद है क्या, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि आज के दौर में लोग दूसरी पद्धति से आयुर्वेद को जोड़कर देखते हैं, उसी तरह से सोचते हैं और उसी तरह से चाहते हैं कि डॉक्टर उनका इलाज करे। तो आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आपका बहुत अनुभव है इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि आयुर्वेद असल में है क्या।
2: इसका जो शाब्दिक अर्थ बनता है आयु वेद, आयु मीन्स जीवन, वेद मीन्स ज्ञान
0: जी।
2: इस जीवन का ज्ञान जिस शास्त्र में है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और हम लोग जो इमेज बनाते हैं माइंड में, आयुर्वेद का सुन के लगता है कोई बुजुर्ग सा वैद्य होगा, जड़ी बूटियां घोल के देता है जड़ी बूटियां देगा तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा हो गई, देसी इलाज हो गया
0: जी।
2: पर आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो मेडिसिन का पार्ट सबसे छोटा है, आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े वो पार्ट सबसे बड़ा है। चरक संहिता को देखें तो 120 उसमें अध्याय हैं
0: जी,
2: तो 32 अध्याय सिर्फ मेडिसिन के ऊपर है, बीमारी के ऊपर है,
0: और बाकी सभी कि बीमारी ना हो है क्या।
2: हाँ, बीमारी ना हो
0: उस पर आधारित
2: है।
0: कितनी बड़ी बात है।
2: और आयुर्वेद का जो असली ध्येय था कि पुरुषार्थ की प्राप्ति, हमारे पूरे जीवन का जो ध्याय है वो होना भी यही चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अल्टीमेट इज मुक्ति, किससे, इस जीवन चक्र से। उसका जो माध्यम है वो एक स्वस्थ शरीर हो सकता है, शरीर में आपका स्वस्थ मन भी आता है, ये बॉडी भी आती है और इंद्रियों के सेंस ऑर्गन्स भी आते हैं, जो हमारे पूरी स्वस्थ की परिभाषा है जिसे WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे, उसमें है सम दोषा सम धातु सम अग्निश मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ विधेयते। जिस व्यक्ति के तीनों दोष वात पित्त कफ, सातों धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और जो मल है, जो हमारा स्टूल है, यूरिन है, स्वेट है, ये सब बैलेंस में रहते हुए अग्निश पेट की जो अग्नि है वो बैलेंस में हो, और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, इंद्रियों का अपने सत्व के साथ जो अपने अंदर की चेतना है उसके साथ एक तारतम्य हो, प्रसन्नता वाला भाव हो, तब हम स्वस्थ काउंट करते हैं।
0: अच्छा, पूरी तरह से जब कोऑर्डिनेशन

0: हो, समन्वय हो, इन तमाम जो बातों के बारे में आपने बताया, तो वो उस पर आधारित है
1: आधारित। और ये सम का मतलब क्या था? सम, मेरा सम, आपका सम, अलग अलग है,
0: अलग अलग है,
1: क्यों? हमारी प्रकृति अलग है।
0: तो डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आपने अपनी बात में ये कहा स्वस्थ व्यक्ति किस तरह से स्वस्थ रहे, ये हमें आयुर्वेद समझाता है, तो पहले इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, क्योंकि जो बीमार है उसमें तो बताया है कि बीमारी का इलाज इस तरह से है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे विस्तार से समझाइए।
1: जी, हमारा श्लोक क्या है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमच। दो मुख्य एम है आयुर्वेद के, कि जो जिस तरह से वो काम करता है। सेकंड के लिए तो सबको तैयार हो रहा है, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाओ, जब बीमार ना हो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, वो व्यक्ति असली रोगी हम कह सकते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, आई एम वेरी लक्की कि मेरे पास दोनों तरह के केसेस आते हैं, बीमार भी आता है और कोई सिर्फ यही चेकअप कराने आता है कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं,
0: क्या मैं स्वस्थ हूँ,
1: स्वस्थ हूँ। और फिर हम उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, हमारे जो स्वस्थ रहने के क्राइटेरिया है उसमें उसकी प्रकृति, आयुर्वेदा मीन्स एक कोऑर्डिनेशन विद नेचर, अपनी आदतों को बदलते रहना।
0: बहुत अच्छी बात,
1: आदतों को बदलते रहना अपनी प्रकृति के हिसाब से, मदर नेचर के हिसाब से, बाहर की प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और उम्र के हिसाब से,
0: अपने शरीर का मौसम बदलते रहना,
1: हर चीज अपनी आदतों को बदलते रहना ही आयुर्वेद है।
0: जी जी जी,
1: हमारे यहाँ मौसम बदलता है तो आदत भी तो बदलेगी, हमारे पेट की अग्नि बदलती है, क्योंकि हमारा सारा जीवन चक्र जो है वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है।
0: जी,
1: जैसे सूरज की रोशनी के पैटर्न चेंज होते हैं, हमारे पेट की अग्नि चेंज होती है, हमारे पेट की अग्नि चेंज होती है तो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की पावर चेंज हो जाती है। तो इसलिए अब के रोग युग में आप देखेंगे, अगर पिछले 40 साल पहले देखें और अब के जमाने में देखें, बीमारियां डिफरेंट क्यों होती जा रही हैं, क्योंकि हम इसको निगलेक्ट करके खाना खाते हैं। अब 12 महीने हमें 12 महीने की हर तरह की सब्जी 12 महीने अवेलेबल है और उसमें टेस्ट नहीं देख रहे हम, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू देखते हैं।
0: जी जी, आप इतनी बातें बता रहे हैं कि जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आपने कहा कि हर शरीर का सम अलग से है, अब मेरा सम क्या है, ये मैं कैसे जानूं? जी,
1: आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बनता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय जिस तत्व की मात्रा उसमें ज्यादा होगी वो उसकी प्रकृति बनेगा।
0: जिस तत्व की मात्रा ज्यादा होगी तो वो किस तरह से पहचानेगा? हाँ, आम व्यक्ति,
1: आम व्यक्ति के लिए उसको समझना पड़ेगा आयुर्वेद को, उसके लिए फिर आपको आयुर्वेद उसको बताता हूँ।
0: लक्षण होंगे
1: बेसिकली, तो आयुर्वेद ने 5 तत्वों को इकट्ठा करके 3 तत्वों में डिवाइड कर दिया, वात, पित्त और कफ।
0: जी,
1: इसी के अकॉर्डिंगली प्रकृति बनती है, वायु वाली प्रकृति, पित्त वाली प्रकृति, कफ वाली प्रकृति, दोनों का कॉम्बिनेशन और फिर तीनों का। इसमें से मोटे मोटे तौर पे समझना पड़ेगा कि पित्त वाले मॉडरेट बिल्ट, क्योंकि शरीर का बॉडी टाइप है ना,
0: पित्त वाले मॉडरेट बिल्ट,
1: ना मोटे ना पतले, बीच के स्टेज, देखने में सुंदर, एक्टिव, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, लीडरशिप क्वालिटीज, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये पित्त वालों के लक्षण एसोसिएटेड होते हैं जो साथ में मिलते हैं।
0: ये पित्त वालों के लक्षण
1: हैं जो मिलते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटीज तो किसी भी बॉडी टाइप में आ सकते हैं, ये मन के साथ जुड़ा है ना,
0: मन
1: को ज्ञान और ध्यान से बदल सकते हैं, लेकिन शरीर का संगठन नहीं बदल सकते। तो प्रकृति जो है शारीरिक स्तर की है। कई लोग कहते हैं कि मैं पित्त वाला हूं लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, तो आपने अपलिफ्ट कर लिया,
0: आपने अपने आप को
1: अपग्रेड कर लिया,
0: बना लिया,
1: लेकिन मॉडरेट बिल्ट है, ना मोटे ना पतले, बीच की स्टेज के। सेम इधर जाए वायु वाली बॉडी टाइप, वायु वाले होते हैं हाइपर एक्टिव, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, दे डोंट हैव वेट गेनिंग टेंडेंसीज, उनके शरीर में वेट गेन करने की क्षमता नहीं होती, उनको एक ही सपना होता है थोड़ी सेहत अच्छी हो जाए, मैं क्या खाऊंगा,
0: सेहत अच्छी हो जाए, रहते हैं
1: तो सिंगल हड्डी होते हैं। इनको समझने के लिए आप सर महात्मा गांधी को देख लीजिए, हिटलर को देख लीजिए, दे बोथ फॉर वायु प्रकृति। आयुर्वेद में अगर देखें तो चरक संहिता के हिसाब से प्योर वात इज नॉट पॉसिबल, वो विकृति है। प्योर वात के अगर लक्षण देखें तो वो ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, उसके शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा, आवाज बिल्कुल खराब होगी, इस तरह से ये मिक्स कॉम्बिनेशन में
0: ये मिलना मुश्किल है,
1: ये मिलना मुश्किल है। लेकिन प्योर
0: कॉम्बिनेशन,
1: प्योर वात तो मैंने भी नहीं देखा,
0: नहीं देखा
1: मैंने, देखा नहीं, उसके आसपास के देखे हैं बट जिसमें वात बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो वो वात वाले बॉडी टाइप में यही सपना होता है गांधी जी जैसे, दे आर हाइपर एक्टिव, अनशन उपवास कभी भी कर लो, भूख हड़ताल उनका बेस्ट इंजन होता है, कम खाते हैं जितना मर्जी आउटपुट दे सकते, क्योंकि वो टिक के बैठ नहीं सकते, काम जितना मर्जी करवा लो
0: ओके,
1: लेकिन स्टेबल नहीं होते, बात हवा है ना, हवा टिकती नहीं, उनका मन भी नहीं टिकता।
0: आज आपकी बातें सुन के हमारे श्रोता अपना अवलोकन करेंगे कि मैं कैसा हूं।
1: तीसरे होते हैं कफ प्रकृति के, वाटर एलिमेंट,
0: यार
1: बल्कि कूल, काम, लेजी, वो सबसे बेस्ट बॉडी टाइप होते हैं, उनको किसी चीज की जल्दी नहीं होती, उनको हवा पानी लगते हैं।
0: अच्छा,
1: उनको एक ही सपना होता है थोड़े से स्लिम हो जाए, लेकिन लेजीनेस की वजह से ना वो खाना छोड़ सकते हैं ना एक्टिविटी कर सकते। जिस दिन वो रेगुलरली एक्टिविटी करने लगते हैं तो बेटरमेंट तो होती है, बट कुछ लोग मेंटेन कर पाते हैं, कुछ लूज करते हैं, लेकिन छोड़ते ही डबल स्पीड से वापस आ जाते हैं।

0: आपका कहने का मतलब ये है कि इन तीनों वर्गों में अगर इच्छा शक्ति है तो वो आप एड ऑन कर सकते हैं,
1: अपने एड ऑन कर सकते हैं। तो वही है वात वाले स्लिम, मॉडरेट और हैवी, ये वात पित्त कफ वाली बॉडी टाइप्स हैं, ये इनका सम होता है। इस बॉडी टाइप में जैसे अग्नि वाले में मॉडरेट वाले हैं, उनकी पेट की अग्नि भी ऐसे ही होगी, तिखी सी होगी, थोड़ा सा खाते पेट भी भर जाता है, अच्छा खा सकते हैं। जो वायु वाले हैं उनकी पेट की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर भी वैसे ही होगी, उनकी अग्नि कैसी होगी, विषम। विषम मतलब थोड़ी सी उठी, थोड़ा सा खाते पेट भर जाए, इनपुट नहीं ले सकते, ना उनको भूख होती है ना खाने का शौक होता है।
0: तो उनमें गैस की प्रॉब्लम भी रहती,
1: उनके टेंडेंसीज रहेंगी, वात के 80 रोग हैं तो 80 के 80 आने की क्षमता रहेंगी अगर वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस
0: नहीं करेंगे।
1: उनको उनको तेल और घी से दोस्ती रखनी है, क्योंकि वो खुश्क तासीर के लोग हैं। खुश्क है ना, वायु, वायु का लक्षण है रुक्षता, हवा के अंदर आप किसी चीज को रख दो वो सूख जाती है, तो शरीर उनका सूखा होता है। तो उनको तेल लगाने में, खाने में घी, तो उनकी चिकित्सा ही तेल है।
0: हर एक को अपने शरीर को सम रखने के लिए काम करना पड़ता है।
1: और तीसरे जो वाटर एलिमेंट वाले हैं, उनको दो ही शौक होते हैं, खाना और सोना, उनको दो ही शौक है। तो इसलिए वो खाते हैं, सोते हैं, फिर उठ के अफसोस करते हैं कि यार मैं कर लेता तो अच्छा था। लेकिन जिस दिन ये लोग अपनी रेगुलरिटी बनाते हैं, तो नेचर ने इनपे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होती है कि इनके रास्ते बड़ी जल्दी खुल जाते हैं,
0: अपने आप रास्ते बन जाते हैं। इच्छा शक्ति की बात है,
1: इच्छा शक्ति की बात है,
0: क्योंकि
1: सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग और एक रेगुलर
0: सोर्स की बात है,
1: रेगुलर एक्टिविटी, ये 3 दिन बाद हर चीज में छुट्टी कर लेते हैं।
0: तो ये तो हुई सम की बात डॉक्टर श्वेत
1: जी।
0: अब आपने अग्नि की बात की थी, अग्नि तो सभी में है, तो अग्नि के बारे में थोड़ा
1: इलाबोरेट। अग्नि का जो है कॉन्सेप्ट, दैट इज जठर अग्नि, सभी अग्नियां, जैसे मैंने बोला सम धातु, धातुओं की अग्नि अपनी होती है, पेट की अग्नि, जठर अग्नि सबसे सबसे टॉप अग्नि, पेट की भूख, वो हर एक की, जैसे मैंने बॉडी टाइप बताया उसमें विषम अग्नि है, पित्त वालों में तीक्ष्ण अग्नि है, और जो उनमें होती है वो थोड़ी स्ट्रांग और बैलेंस्ड अग्नि होती है वाटर एलिमेंट वाले में, इसलिए उनको खाया पिया लगता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पूरे आयुर्वेद को डोमिनेट करता है,
0: डोमिनेट करता
1: है, इसलिए कहते हैं कि सारी बीमारियां पेट से होती हैं,
0: पेट से होती हैं।
1: पेट की अग्नि को जब आप इग्नोर करते हो तो रोग एंटर करते हैं।
0: तो आपने यहां बहुत अच्छी बात बताई कि पेट की अग्नि को इग्नोर जब करते हैं, तो कई बार हमें अनजाने में मालूम नहीं है कि हम अपनी अग्नि को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कैसे मालूम किया जाए?
1: ये
0: और अग्नि को दुरुस्त रखने के लिए क्या किया जाए?
1: इसमें सबसे बड़ा जो रोल है कि बिगड़ती क्यों है, मैंने जो अपना रिसर्च में एक लाइन लिखी है
0: जी,
1: जो मदर्स हैं
0: जी
1: वो आदत डालती हैं, ले बेटा खा
0: जी,
1: ले बेटा खा,
0: मेरे बच्चे ने बहुत कम खाया,
1: हमें बचपन से आशीर्वाद मिलता है बेटा खाते रहो सेहत अच्छी रहती है, और बच्चा क्या करता है खाने पे जोर देता है,
0: दबा के खा,
1: आयुर्वेद बोलता है खाते रहो पचाते रहो, पचने का टाइम देते रहना तो स्वस्थ रहोगे। मैं कितने घरों में जाता हूं, कई लोगों से मिलता हूं, उनकी डाइट का लाइफस्टाइल का अगर हम पूछते हैं तो पता लगता है तो सारे दिन खाने पे जोर है, पचाने पे तो है ही नहीं,
0: हम अपने शरीर को पचाने का समय नहीं देते हैं
1: जी। हमें लगता है कि न्यूट्रिशियस फूड लेने से एनर्जी आती है
0: जी,
1: मुझे लगता है कि उल्टा है। अगर आपके पेट की अग्नि किसी को पचा सकती है, जैसे वायु वाली प्रकृति है, उसको पनीर खिलाओ, राजमा खिलाओ, उसको पचेगा ही नहीं, उसको मूंगी धुली दाल घिया तोरी खिलाओ, उसको एनर्जी मिलेगी वहां से, क्योंकि उसकी बॉडी उसको पचा सकती है, पका सकती है, तो लगा भी सकती है,
0: वही उसकी एनर्जी बन जाएगी,
1: एनर्जी बन जाएगी। उसको पनीर दोगे जो उसको पचता नहीं, उसे एनर्जी कहां से निकालेगा? आप उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे दो, उसको अब्सॉर्ब ही नहीं हुए अगर उसकी पेट की अग्नि को इग्नोर करके हम खाएंगे। इसलिए सबसे पहले पूछते हैं कि आपके पेट की भूख कैसी है, जब आपकी पेट की भूख ठीक है तब उस हिसाब से खाना चाहिए। जब हम पेट से पूछ के नहीं खाएंगे तो हम बीमार होंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है हम आदतें नहीं छोड़ते, तब रोग आते हैं
0: जी जी।
1: लोग 70-70 साल के आके कहते हैं हम तो सवेरे वाला ब्रेकफास्ट नहीं बंद कर सकते, तो मम्मी ने तो बचपन से खाता आ रहा हूं, मम्मी ने पहले का बोल रखा है खाना है। अब वो 3 रोटियां बचपन में खाता था, जवानी में 3 खाता था, बुढ़ापे में भी 3 ही खानी है, क्योंकि मेरी नेचर है शुरू। उसके लिए मैं रोज एक खाली पेट गैस का कैप्सूल खा लेता हूं, मेरे को पच जाता है।
0: तो वो तो कोई बात नहीं ना हुई, वो तो आदत हो गई, शरीर को आपने डाल दिए,
1: और इन्हीं आदतों को बदलना ही आयुर्वेद,
0: आयुर्वेद है। बहुत अच्छी बात है,
1: ये आम आदमी के लिए जरूरी चीज़ है।
0: और आयुर्वेद को हम बाकी पद्धतियों के साथ जोड़ लेते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वहां इलाज इस तरह से हो रहा था, यहाँ इलाज कैसे होगा,
1: कैसे होगा,
0: जबकि ये पूरी तरह से कुदरती तौर पर है, आपके शरीर की संरचना को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया।
1: अब यहाँ कॉन्सेप्ट एक और आता है जो हम बड़ा कॉमन कहते हैं, वायु और बाई, दो वर्ड्स है ना, दोनों में कंफ्यूजन होता है कि किसी का वायुवादी बन जाता है शरीर में, हम बड़ा कॉमन ये
0: गैस कहते हैं,
1: गैस इज वायु,
0: वायु
1: और बाई इज आमा, आमा इज द टॉक्सिक पार्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल,
0: जो पड़ा रहता है,
1: हम खा रहे हैं अपनी पेट की अग्नि को छोड़ करके, तो बॉडी की अग्नि उसको नहीं पचा पा रही
0: जी,
1: तो उससे उसके अंदर विष पैदा होता है, टॉक्सिन पैदा होता है, उस टॉक्सिन ने जब जाकर के एक्युमुलेट होकर के जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होना तो आर्थराइटिस क्रिएट करेगा, हार्ट पे जाएगा तो रूमेटिक आर्थराइटिस करेगा। तो ये जितने भी बाई वादी के रोग हैं, रूट जो है वो बाई बनती है, और बाई इज ड्यू टू

0: इम्बैलेंस ऑफ द फायर, डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम इग्नोर करके आगे चलते जाते हैं खाने पे जोर दे करके, वो बाई जब इकट्ठी हम हो जाती है तो वो हर बीमारी का रूट कॉज बनती है। आम आदमी के लिए उसको पहचानने के 5 सिम्टम है
1: जी।
0: कि सबसे पहले जब सुबह उठे उसके मुंह का स्वाद अजीब सा, शरीर में भारीपन सा, चलते फिरते शरीर खुल जाता है। बहुत से लोग सुबह उठते हैं एड़ियां भारी होती हैं, चलते चलते ठीक हो जाता है, ये बाई का पहला लक्षण है। खाने के बाद सुस्ती, खाया ऐसा लगता है मैं सो जाऊं। बिना काम के थकावट, जैसे फ्री होंगे थकावट शुरू हो जाएगी, काम में बिजी होंगे थकावट कम हो जाएगी, बिना काम के थकावट और सारे जोड़ों में फिर जकड़न, अकड़ाहट, स्टिफनेस, भारीपन स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ये सारे बाई के लक्षण है।
1: तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए?
0: आयुर्वेद की सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है लंघन, लघु आहार, जिसे लोकल लैंग्वेज हम कहते हैं उपवास, व्रत
1: जी।
0: पेट की अग्नि को रीबूट कर देना, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे वापस लेके आना ही सारा चिकित्सा है। करना क्या है? हाँ। 3 दिन सिर्फ प्लेन खिचड़ी डाइट पे आ जाओ।
1: जब ऐसा लगे
0: कि आपका शरीर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो पेट की अग्नि को, और आपका शरीर हमेशा भारी भारी रहता है, चलने में दिक्कत होती है, खाने के बाद खा तो लेते हैं लेकिन पचने का ऐसा लगता है खाना वही पड़ा रहा,
1: तो एक्टिव नहीं रहते
0: और मन भी उदास है, शरीर में जान नहीं है, प्राण नहीं है, तो शरीर को एक बार रीबूट कर दो। रीबूट करने का सबसे अच्छा तरीका है 3 दिन के लिए पतली सी खिचड़ी, जीरे और अदरक का थोड़ा सा तड़का लगा के, हल्का सा जीरा भी और अदरक भी पेट की अग्नि बढ़ाते, और गुनगुना पानी। कच्ची चीज को 3-4 दिन अवॉइड करना है। कच्चा अन्न जो है, चाहे फ्रूट्स हैं चाहे सैलेड्स हैं, हम लोग कहते हैं हम उसमें अपनी एडिशंस करते हैं कि दही डाल लेंगे, सिर्फ खिचड़ी
1: भी बना लेंगे,
0: हाँ कुछ भी बना लेंगे, खिचड़ी मतलब सिर्फ खिचड़ी, उपमा, भुने हुए चने कभी बीच में लेने हो तो शायद, अगर आपके पेट की अग्नि स्ट्रांग है। पर सबसे अच्छी चीज है लंघन, मींस 3 दिन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना,
1: उपवास करना
0: 3-5 दिन अपनी अपनी पेट की और क्षमता के हिसाब से,
1: तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे।
0: आपको खुद ही लगे मेरे को अपना शरीर महसूस ही नहीं हो रहा, भूख अच्छी लगने लगी, शरीर हल्का हो गया, अपनी बॉडी के अंदर आपने उसको सपोर्ट दिया ताकि वो सारे शरीर का कचरा एक बार पचा करके निकाल दे। और रात को एक लैक्सेटिव लेना है, इस सब को लो, त्रिफला लो, हरड़ लो, जो अपनी प्रकृति है उस हिसाब से लो, ताकि सवेरे गट क्लीन हो, पेट जितना अच्छा क्लीन होगा 3 दिन में खिचड़ी से कब्ज हो सकती है। और ये बिल्कुल सस्ता और सिंपल सा टेक्निक है जो हम अपने आप पे करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं 3 दिन खाएं खाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी, और खा रहे थे तो कौन सी एनर्जी आ गई।
1: और घर बैठे बिठाए आपने तो आज नुस्खा दे दिया हमारे श्रोताओं को कि जिनके बायबादी है वो किस तरह से अपना ख्याल रखें और क्या करना उन्हें, अगर ये करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना,
0: बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे।
1: तो अब यहां हम रुकते हैं और आपकी पसंद का एक गाना शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे
0: जी। तो जैसे हम आयुर्वेद की बात कर रहे थे कि इसमें प्रकृति के साथ जुड़ा है, तो प्रकृति का एक बड़ा सुंदर सा गीत है, हरी भरी वसुंधरा, ये कौन चित्रकार है, ये मेरा सबसे प्रिय सॉन्ग है,
1: ये मुकेश का गाया हुआ गाना,
0: मुकेश का गाना
1: हम आपके लिए शामिल करते हैं
0: जी।

अपने श्रोताओं को एक बार फिर से हम बता दें, आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेत खुंगर जो आयुर्वेदाचार्य हैं। आज हमें आयुर्वेद और हम इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं। इस गीत से पहले जो जानकारी आप दे रहे थे

0: अग्नि के बारे में आपने बताया, सम के बारे में आपने बताया, स्वस्थ को किस तरह से स्वस्थ रहना है ये आपने बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि घी जो है आयुर्वेद में उसका क्या महत्व है, देसी घी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। सोशल मीडिया में आए दिन चलता रहता है कि एक चम्मच रोज खाना चाहिए, कोई कहता है कि दो चम्मच रोज खाना चाहिए, कहीं ये सुनने को मिलता है कि खाना ही नहीं चाहिए
1: जी।
0: तो मुझे ये बताइए, मक्खन, घी, देसी, इसे खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो इसके लिए क्या नियम है आयुर्वेद में?
1: वही बात आती है कि हम,
0: क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत आते
1: जी
0: हैं।
1: जी बिल्कुल आते हैं, हमारे पास भी रोज आते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी ब्रेन वॉश किया जाता है कि घी तेल खाने से हार्ट की ब्लॉकेज होती है
0: जी।
1: और मैं आपको इतने लोग मिलवा सकता हूं पर्सनली जिन्होंने कितने साल से नहीं खाया तब भी ब्लॉकेज थी। तो अकेला कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि घी खाने से ही ब्लॉकेज होगी, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो घी सर्वश्रेष्ठ पित्त शामक है। तो पित्त की अगर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है दैट इज घी। हमारे मन में क्या बैठा, घी गर्म होता है, आयुर्वेद के हिसाब से घी जो है वो शीत वीर है, ठंडा है, तासीर में, पचने में भारी है, गुरु है। तो पेट की अग्नि के हिसाब से उसकी डोज सेटअप होगी। वही वायु वाली प्रकृति के लिए घी बहुत अच्छा है, खाना कितना है जितना वो पचा सके,
0: वायु वाले के लिए अच्छा है,
1: अच्छा है वायु के लिए, क्योंकि खुश्की दूर करेगा। वात और पित्त प्रकृति वालों के लिए घी सर्वश्रेष्ठ है। कफ वाले जिनको खुद ही घी, पानी घी कितना लगता है, उनको घी देने से उनका वेट गेन होगा, तो उनका अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उनको घी की क्वांटिटी कम रहेगी, लेकिन उनको डेफिनेटली वो काम करेगा।
0: अब बात वही आ गई कि अगर वो एक्सरसाइज करते हैं,
1: एक्सरसाइज
0: अपना ख्याल रखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं,
1: बिल्कुल हेल्थी रहने का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, जीभ पे ताला, टांगों को चलाना, एंड माइंड ऑलवेज हाई स्पिरिट, चढ़ती
0: कला।
1: समझ सकते हैं, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, चलना फिरना ज्यादा, और माइंड ऑलवेज हाई स्पिरिट्स में, चढ़ती कला में मन, देखी जाए,
0: ये मूल मंत्र है,
1: ये मूल मंत्र है। जिसको ये आ गया, आप खाओ, सब चीज खाओ, और उसको पचाने के लिए एक्टिविटी तो करो। आजकल सबकी प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी की जगह मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है। ऊपर वाला हमें रोज 100 रुपया देता कि खर्च करने को, और उसमें से हम 70 रुपये ब्रेन से खर्च करते हैं, 30 बॉडी से खर्च कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है, सारी माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बॉडी पे प्रोजेक्ट होती हैं, और हम बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं
0: जी। जी,
1: और माइंड को अगर ठीक रखने का तरीका क्या है, बॉडी से 70 रुपये खर्च करने शुरू करो, देखो माइंड के ऊपर प्रेशर ही कम हो जाएगा, काम बेटर वे से कर पाएगा।
0: और ये सब चीजें हमारे हाथ में, हमें मालूम नहीं,
1: मालूम नहीं, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करना चाहते। हमें बचपन से अच्छी अच्छी जॉब्स चाहिए थी, और जॉब्स वाले आपको पूरा निचोड़ते हैं, वो आपके लिए टाइम नहीं छोड़ते, और अगर आप टाइम नहीं दोगे तो डॉक्टर के लिए कमा रहे हो आप, बॉडी में टाइम लेनी लेनी है, या तो किस्तों में दे दो या इकट्ठा ले लेगा,
0: आप अपने लिए तो जिए नहीं,
1: जिए नहीं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, प्रोग्राम का समय भी भागा जा रहा है। देखिए आयुर्वेद सिस्टम है हमारा, प्राचीन समय का है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उस धरती पर हम पैदा हुए जिस धरती ने हमें आयुर्वेद जैसा ज्ञान दिया। एक अर्थराइटिस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद में किस तरह से इलाज होता है, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, अगर उन भ्रांतियों की बात करूंगा तो समय निकल जाएगा, आप खुद ही बता दीजिए कि अर्थराइटिस जैसी जो समस्या है इसका आयुर्वेद में इलाज क्या है।
1: अर्थराइटिस भी आयुर्वेद में भी 3 तरह का है, एक तो वात रक्त जिसे आयुर्वेद मॉडर्न साइंस में हम गाउट के नाम से जानते हैं, जिसमें यूरिक एसिड इंक्रीज होता है कि वो रक्त में वात की में मिक्सिंग हो जाती है, जिस वजह से जोड़ों में इफेक्ट आता है, तो वात रक्त की वजह से यूरिक एसिड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आते हैं, उसमें रक्त की शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है। वन ऑफ द ट्रीटमेंट है वात को पैसिफाई करना, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करना, पित्त को बैलेंस करना, इसमें ग्लोए का अच्छा रोल मिल जाता है, पानी का इंटेक ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा, जो यूरिक एसिड के कॉन्सेप्ट के साथ हम जोड़ सकते हैं। फिर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आम वात, जिसे हमने बाई की बात की, बाई वाला गठिया, वो आपकी अग्नि से जुड़ता है। रूमेटिक आर्थराइटिस जिसे मॉडर्न साइंस में कहा जाता है, उसे आयुर्वेद में आम वात के नाम से लिखा गया है, वात रक्त भी पहले का लिखा हुआ है, आम वात भी लिखा गया है। तीसरा जो मोस्टली अब एज रिलेटेड तो पहले होता था, अब तो एज रिलेटेड भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने बड़े यंगस्टर्स में ऑर्थोआर्थराइटिक टाइप चेंजेस देखी है, जोड़ों में जो घुटनों में घिसाई, गैप कम, संधिगत वात के नाम से जाना गया है।
0: अच्छा, इतने प्रकार हैं।
1: हाँ, इतने प्रकार, तीनों टाइप के प्रकार, जिसे हम कहते हैं कि मॉडर्न साइंस ने उसको डिफरेंशिएट किया, ये ऑलरेडी वर्णित है शास्त्रों में बहुत पहले से ही, संधिगत वात ऑस्टियोथराइटिस, आम वात रूमेटिक अर्थराइटिस, और गाउट जिसे हम कहते हैं वात रक्त, इन तीनों के अकॉर्डिंगली उनके दोषों के हिसाब से पेशेंट की चिकित्सा की जाती है। आम बात की तो सबसे अच्छी चिकित्सा वही जो मैंने बताया, लंघन, हर ट्रीटमेंट का शुरुआत वहीं से करना है, अगर उनमें लक्षण है,
0: खिचड़ी
1: सादी, लंघन, लघु आहार, बिल्कुल लाइट फूड, इतना के बस पेट के लगे कि पेट खाली है, तो वही पचनी शुरू हो जाती है, और डिटॉक्स करो, तो पेशेंट टू पेशेंट है, किसी को त्रिफला से करना है, किसी को सब से करना।

0: किसी को कैस्टर ऑयल से करना, किसी को अमलतास से करना, वो पेशेंट की दोषों के हिसाब से होता है। और तीसरा संधिगत वात। संधिगत वात का जो मैं सबसे बेटर बताना चाहूंगा, वन ऑफ द मेन रीजन जो यंगस्टर्स में आने लगा है, रॉन्ग पोस्चर्स। अब मान के चलिए कि अगर गाड़ी की अलाइनमेंट हिल जाए तो टायर घिसते हैं
1: जी,
0: ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट हिल जाए तो घुटने घिसेंगे। तो बदलना क्या है, टायर बदलने हैं कि अलाइनमेंट ठीक करना?
1: अलाइनमेंट ठीक करनी,
0: लेकिन पैसे किसमें बनेंगे? टायर बदलने के।
1: टायर बदलने
0: तो जोर किस पे लगता है? टायर बदलने। इसलिए बहुत से लोग टायर बदल लेते हैं, सूट नहीं करता। अलाइनमेंट को ठीक करना है, उसका एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, हर एक को करना चाहिए, क्योंकि सबका पोस्चर गलत है
1: जी।
0: चलते वक्त एक नियम, एक मंत्र की तरह मन में जाप करना है, पैर सीधे पेट अंदर ठुड्डी नीचे, पैर सीधे पेट अंदर ठोड़ी नीचे। अब के पैर हैं वी शेप में बाहर की तरफ निकले हुए,
1: जबकि वो सीधे होने चाहिए,
0: आपस में बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन की तरह। ये पैर सीधे रखेंगे, पेट को अंदर टकें, जैसे फौजी चलता है
1: जी।
0: जब आप पेट को अंदर करते हैं, रीढ़ की हड्डी से वेट हटके लास्ट पीछे के मसल्स पे चला जाता है, जहां इंजेक्शन लगाते हैं। इन मसल्स पे वेट आना चाहिए, हम रीढ़ की हड्डी पे डाल के चल रहे हैं।
1: तो आपका कहने का मतलब है कि पेट को अंदर खींचते हुए चलना,
0: हल्का सा पेट को अंदर टक इन करना। जैसे अंदर करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूट

0: इसमें बनेंगे टायर बदलने के,
1: टायर बदल लेंगे
0: तो जोर किस पे लगता है, टायर बदलने। इसलिए बहुत से लोग टायर बदल लेते हैं, सूट नहीं करता। अलाइनमेंट को ठीक करना है, उसका एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, हर एक को करना चाहिए, क्योंकि सबका पोस्चर गलत है
1: जी।
0: चलते वक्त एक नियम, एक मंत्र की तरह मन में जाप करना है, पैर सीधे पेट अंदर ठोटी नीचे, पैर सीधे पेट अंदर ठोटी नीचे। हबके पैर हैं वी शेप में बाहर की तरफ निकले हुए,
1: जबकि वो सीधे होने चाहिए,
0: आपस में बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन की तरह। ये पैर सीधे रखेंगे, पेट को अंदर टकें, जैसे फौजी चलता है
1: जी।
0: जब आप पेट को अंदर करते हैं, रीढ़ की हड्डी से वेट हटके लास्ट पीछे के मसल्स पे चला जाता है, जहां इंजेक्शन लगाते हैं। इन मसल्स पे वेट आना चाहिए, हम रीढ़ की हड्डी पे डाल के चल रहे हैं।
1: तो आपका कहने का मतलब है कि पेट को अंदर खींचते हुए चलना,
0: हल्का सा पेट को अंदर टक इन करना। जैसे अंदर करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन दो मसल्स पे। अदरवाइज हम वेट को रीढ़ की हड्डी पे डाल के चल रहे हैं, और ठोटी हमारी सबकी ऊपर की तरफ होती है। आप देखने फोटो खिंचवाते तो कई बार लगता है खड़ा तो मैं सीधा था, लेकिन ठोटी ऊपर की तरफ आई है।
1: ये डॉक्टर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, ये पहली बार इस प्रोग्राम में ये बातें सुनने को मिली। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि पैर सीधे करके और पेट को अंदर थोड़ा सा खींच कर,
0: हल्का सा रखकर,
1: और ठोटी को नीचे की,
0: हल्का सा नीचे, गर्दन नीचे नहीं, ठोटी नीचे,
1: ठोटी नीचे,
0: इसमें थोड़ा फर्क है बस। इसमें आपको थोड़े दिन दिक्कत आएगी,
1: ये तो ध्यान देते नहीं
0: क्योंकि हम गलत पोस्चर पे चल रहे हैं। जब ठीक करेंगे तो थोड़ी दिन थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप देखना आप कंफर्टेबल हो जाओगे, लंबी वॉक पे थकावट खत्म हो जाएगी। अपनी बॉडी को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट दो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सैर करो, एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में तीन चिकित्साएं हैं, आहार, विहार और औषधि। अगर आपने डाइट एंड लाइफस्टाइल, आहार और विहार को सुधार लिया तो औषधि की जरूरत नहीं है,
1: नहीं।
0: तो घूम करके मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पेशेंट ने खुद ही अपने आप को ठीक करना है। अगर वो अपने प्रति थोड़े अवेयर हो जाए, अपनी प्रकृति को समझे, मदर नेचर को समझे, कुदरत आपको इतना कुछ अपने समय के हिसाब से दे रही है, उसी सीजन के हिसाब से सब्जियां खाओ तो आपके पेट पर बर्डन कम पड़ेगा। अब हम घिया सर्दियों में खाएंगे और मटर गर्मियों में खाएंगे तो हमारे पेट की अग्नि पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा?
1: जी जी बिल्कुल।
0: हमारी मॉडर्न साइंस सारी की सारी उस पे लगी है कि इस मौसम में ये भी उगाए, जहां अवेलेबल है वहां तो होना चाहिए ना। अब जहां ठंड और भयंकर ठंड पड़ती हो वहां
1: वो स्थिति अलग है,
0: वो अलग है, उनके लिए डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो 6 के 6 सीजन्स में इतनी वैरायटी ऑफ फूड है, इतना कुछ हमें मिला हुआ है ऊपर वाले की कृपा से।
1: डॉक्टर साहब, आहार विहार और औषधि के बारे में आपने बताया, अगर हम औषधि की बात करें आयुर्वेद में, तो कहा जाता है कि जी आप आयुर्वेद क्यों कर रहे हो, साइड इफेक्ट होंगे, जबकि तो आयुर्वेद के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है, अगर संक्षिप्त में बता दें?
0: वैसे तो हमारे सारे पेशेंट इसलिए आते हैं यही मान करके कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर उनको माइंड में ब्रेन वॉश किया जाता है कि इसमें स्टीरॉयड मिलाए होते हैं, इसमें भस्में होती हैं जो किडनी खराब करती हैं।
1: हाँ, पहला ये जवाब होता
0: पहला हाँ। अब ये सोचने की बात है कि 5-6 हजार साल से जो हमारी साइंस पीछे बोल रही है तब से आयुर्वेद चलता आ रहा है। अभी तक अगर ये किडनी से फेल हो रहे होते, बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूं, तो सरकार इनको पद्म विभूषण पद्मश्री तो देती नहीं आयुर्वेद वालों को, और आयुष मंत्रालय तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं करती। आयुष मंत्रालय सरकार ने बनाया ही उन्हीं लोगों के लिए जो मिसकंसेप्शन क्रिएट करके बैठे हैं माइंड में कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स हैं। ये उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने के लिए आयुष मंत्रालय बना, जो कंटिन्यूस रिसर्च वर्क को डॉक्यूमेंट करके प्रेजेंट करेगा। आने वाले कुछ समय में जो लोग अभी भी इनको अंधविश्वास मान के चल रहे थे, उनके विश्वास के लिए बनाया। जो आम जनता है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनको तो पता ही इसके रिजल्ट हैं।
1: बिल्कुल सही है।
0: और गलत डोज पे किसी को भी गलत मेडिसिन देना तो उसका अपना मेन इफेक्ट तो रहेगा। अगर मैं आपकी तस्वीर में गर्मी है और मैं आपको गर्म चीज दे दूंगा तो गर्मी तो करेगा, वो साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसका मेन इफेक्ट होगा,
1: मेन इफेक्ट होगा।
0: और बहुत प्रोलॉन्ग यूज के बाद कोई भी मेडिसिन अगर लंबा टाइम आप लेते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे आएगा, तो उसको हमें डॉक्टर से पूछ करके चेंज करना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, एक सवाल मेरे जहन में आया, कुछ लोग कहते हैं कि देसी इलाज मत करवाना, तो वो देसी इलाज को आयुर्वेद के साथ जोड़ देते हैं या आयुर्वेद के इलाज को देसी के साथ जोड़ देते हैं। देसी और आयुर्वेद, इसमें क्या अंतर है, हम किस तरह से समझें?
0: पहले तो हम भी ये समझते थे कि देसी मतलब आयुर्वेद को कहते होंगे
1: जी जी,
0: बट मैंने किसी डॉक्टर से बात की, वो देसी समझते हैं जितने भी झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हैं जो मिक्स प्रैक्टिस के नाम पे करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो लोग शर्तिया इलाज करते हैं आयुर्वेद में गारंटीड वाला, वहां जरूर शक करना चाहिए। जब आपने पेशेंट की प्रकृति नहीं देखी, उसके दोषों को नहीं देखा, आप शर्तिया इलाज कैसे
1: शर्तिया कर सकते कैसे
0: है?
1: हो गया।
0: और उसमें अगर उसको रिजल्ट मिल रहे हैं, हर एक को मिल रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कुछ शक करने की जरूरत है, उसको चेकिंग कराने की जरूरत है, लैब्स में जाके चेक कराओ। कई लोग मिलाते हैं, या आयुर्वेद को बदनाम करने वाले बहुत से लोग बैठे हैं जो शॉर्टकट। और एक सबसे मजेदार बात जो मैंने अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में देखी है, ऑथराइज्ड क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट इस हिसाब से नहीं करेगा कि हम शर्तिया इलाज करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने देसी और आयुर्वेद के इलाज के बारे में। अब बस बात वही है कि हमें जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी तभी मिलेगी जब आप सही स्थान पर पहुंचेंगे, सही व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, गलत फहमियां दूर की आप। तो डॉक्टर श्वेत खुंगर, आप हमारे

प्रोग्राम संजीवनी में आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब अगले सप्ताह एक और मेहमान के साथ आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संजीवनी, ये आकाशवाणी है। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है।

0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, 12:05 हुए हैं। अब विविध भारती के मुंबई केंद्र से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

दो कलियां फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का है संगीत। आज जन्मदिवस है अभिनेत्री नीतू सिंह का, तो चलिए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे याराना फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही

0: इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
4: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत रफू चक्कर फिल्म से कंचन शैलेंद्र सिंह की आवाजें गुलशन बावरा के हैं बोल और कल्याण जानन जी का है संगीत

0: हम सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है

0: कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत राजमहल फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। वर्मा मलिक और तुलसी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: सॉन्ग सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से. सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ. और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है. किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजा है, अब हम आपको अपनी अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। अब से बस थोड़ी ही देर में श्रोताओं 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप हमारे यहाँ से प्रादेशिक हिंदी समाचार सुन पाएंगे। जालंधर केंद्र से रिले करेंगे आपके लिए प्रादेशिक पंजाबी समाचार दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर भी। फिल्म संगीत हम आपके लिए पेश करेंगे 1:15 पर। कुछ फिल्मी गीत शाम 5:05 पर भी सुने जा सकते हैं। मुंबई केंद्र से कार्यक्रम सुरीला सफर आपके लिए हम रिले करेंगे दोपहर 1:30 पर। फिर वहीं से कार्यक्रम त्रिवेणी होगा दोपहर 2:00। श्रोताओं आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले किया करते हैं, पहले दोपहर 2:15 पर, फिर शाम 5:00 और 6:00, रात 8:45 पर और फिर रात 11:00 भी। मुंबई केंद्र से आप सुना करते हैं सदाबहार नगमे दोपहर 2:30 पर। वहीं से दोपहर 3:00 होता है कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 श्रोताओं विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम आपके लिए रिले करेंगे कार्यक्रम पिटारा। आज इस कार्यक्रम में आज के मेहमान सिलसिले के तहत हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वरिष्ठ साहित्यकार और समीक्षा लेखक हरिशंकर राड़ी से। उनके साथ की गई बातचीत का आज दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। हमारे स्टूडियो से शाम 5:20 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। एक और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग सुन सकते हैं आप शाम 5:30 पर।

हमारे केंद्र से श्रोताओं, आप पंजाबी गीत सुन सकते हैं शाम 6:30 पर और 7:47 पर। आपको बता दें पंजाबी गीतों का कार्यक्रम सुर सांझ भी प्रसारित किया जाएगा आपके लिए, समय रहेगा 10:32। जयमाला कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए 7:00। इस कार्यक्रम में सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत पेश किया जाता है। प्रादेशिक मुख्य समाचार भी आप सुनेंगे, समय है 7:45 और 10:30। हवा महल कार्यक्रम में आज 8:00 एक नाटिका सुनवाई जाएगी, नहर घुटो जाए। नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक होता है 8:15 पर, विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही। 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपके लिए। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और आज की फनकार हैं अभिनेत्री नीतू सिंह। 10:00 श्रोताओं, मुंबई केंद्र से ही आपके लिए हम रिले करेंगे उद्घोषक की पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। कार्यक्रम विवरण

0: समाप्त हुआ। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। आपको बता दें इसके फौरन बाद 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। श्री कृष्णलाल पंवार कल चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों एवं अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दें। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से शुरू हुई इस योजना के तहत प्रदेश में 318 कार्य किए जाएंगे। योजना के प्रभावी संचालन के लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 590 करोड़ 19 लाख रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत स्वीकृत 318 कार्यों की सूची पंचायत घरों में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। श्री पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार ग्रामीण अंचल के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ने ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में विकास एवं पंचायत विभाग के 2 प्रमुख पोर्टल जारी किए। इसमें समाधान पोर्टल के माध्यम से पंचायत श्यामलात भूमि पर वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित कर पात्र ग्रामीण परिवारों को कानूनी मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वहीं हरियाणा ग्रामीण परियोजना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के जरिए ग्रामीण विकास कार्यों की चरणबद्ध प्रगति की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये दोनों डिजिटल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता, सुशासन और जन सुविधाओं को और मजबूत करेंगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर चौकस हो गया है। विभाग द्वारा सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को मानसून के मौसम के मद्देनजर पर्याप्त प्रबंध करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने जिले के लोगों से वर्ष के मौसम में मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।
2: प्रदेशवासी हैं, पूरा सहयोग करें, कहीं पर भी पानी रुकने ना दें। ज्यादातर पानी जो है वो घरों में पुराने टूटे हुए मटके होंगे, गमले होंगे या टायर्स पड़े रहते हैं छतों के ऊपर। कूलर्स की सफाई जरूर करें, जहां पानी इकट्ठा कर रखा है तो उसको बिल्कुल एक बार खाली कर दें और खाली करके उसमें से जो भी लार्वा बन जाते हैं उन्हें सबको ड्रेन कर दें, क्योंकि यही लार्वा आगे बनकर डेंगू और मलेरिया जैसी उनको बीमारियां करेंगे।
1: उन्होंने बताया कि अभी तक पलवल जिले में मलेरिया के 2 मामले सामने आए हैं। लोग एहतियात बरतें तो निश्चित तौर पर मलेरिया की बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि वर्तमान दौर में विद्यार्थियों का जीवन केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पूरा जीवन डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के सर्वर पर मौजूद लाखों विद्यार्थियों का एकेडमिक डाटा, शोध पत्र और डिजिटल लाइब्रेरी को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज की चुनौती केवल व्यक्तिगत मोबाइल को सुरक्षित करने की नहीं, बल्कि हमारे पूरे शिक्षण तंत्र को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने की है। शिक्षा मंत्री कल उच्चतर शिक्षा निदेशालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल इकोसिस्टम में व्यक्तियों की सुरक्षा विषय पर पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कार्यशाला में 7500 से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भागीदारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज हमारा समाज साइबर सुरक्षा की गंभीरता को पूरी गहराई से समझ रहा है। कार्यशाला के समापन पर सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट दिए जाने की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने आह्वान किया कि प्रतिभागी यहां से केवल एक प्रमाण पत्र

खेल खेल में आपने इस फिल्म का गीत सुना श्रोताओं, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। अगला गीत सुनवाते हैं आपको, उससे पहले ये एक संदेश सुन लेते हैं।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में अदालत फिल्म से ये गीत।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको श्रोताओं बता दें, अभिनेत्री नीतू सिंह पर फिल्माए गए गीत सुनवा रहे हैं। अगला गीत जो आप सुनेंगे रफू चक्कर फिल्म से हमने चुना है आपके लिए, आवाजें शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की हैं।

0: हमारी श्रोता सुन रही थी फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको नीतू सिंह के गीत सुनवाए। श्रोताओं,
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, अब हमारा प्रसारण हम आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुलीला सफ़र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बैनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहां पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया, और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में 1, 2, 3, 4, 5 या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हों। वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसी कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए। एक ही प्रश्न दे रही हूं इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद है, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद है जहां पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा जरूर।

0: हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ही याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मजेदार भूमिका रही है वो।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम दूजा राम तीजा राम का आईएस जौहर ने, अभिनेता आईएस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानु नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई, ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी माँ पिता बहन सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा बेटों की तिहरी भूमिका कई सारे निभाए हैं अमिताभ बच्चन ने, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राणा रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है, इसके बारे में। आंटी नंबर 1 के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमी पर की बात करें तो वहाँ पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में, और क्या बढ़िया किरदार निभाती है। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में, और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते बीच बीच।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस

0: बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का, और फिल्म दामिनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना पलसी कक्कर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का, और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सब से मिलती हैं। ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो ज़रूर साझा कीजिएगा, और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है। दोनों चीज़ें आपको बतानी है। वो किरदार गायक अभिनेता कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में, और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज़ में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ

बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया। और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं। यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारों जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हो गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत, सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप जरूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, ज़रूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा खोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनका उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सा गीत है, ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए। पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती हैं, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी हर माँ ने कितना प्यार दिया है। और आप सब ने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है और उन माँओं में से आप सब ने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं। और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ, वहीदा रहमान की फिल्म है खामोशी से जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्मसमीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपनाकर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों, जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्म मंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आंकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना।

करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को

दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के

0: खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: संगीत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, जो स्वाभाविक रूप से मेरे

0: संस्कृति पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को, नमस्कार।

0: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
1: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
0: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हमें ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
1: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
0: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं। ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
0: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए, और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत बात कही।
1: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर, चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
0: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
1: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
0: बिल्कुल, और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी, जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया, उसके बारे में।
1: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
0: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए।

0: तो वो क्यों चाहती है ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
1: अच्छा।
0: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है, अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं। इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो गाना बड़ा अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
0: क्या बात,
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहें।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: ये जो, और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार

0: हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
1: बिल्कुल
0: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारे श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई है ना। तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है,
1: बिल्कुल
0: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
0: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
1: क्या बात, क्या है? बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना।
0: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते, हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते, लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है, और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
0: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखियां, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
1: चलिए

चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो

0: बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है। तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बना देती हैं। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुनाया गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
2: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शादी से ज्यादा पसंद करती
0: है। बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
2: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होगी ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं, लाइट शेड के सारे जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
2: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है, तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मी में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है। हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है
2: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती है देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई भी होते ना बहुत
0: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के

0: कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा टोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा टोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती है।
0: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहाँ पर कोटा रोडिया साड़ियाँ ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं ना कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है, वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं हो।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया
3: जी। और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा,
2: क्या होगा, और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो। सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन

0: भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है। किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगा, कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाएं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना?
0: सही कहा,
1: करनी में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़े। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आत्म मंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देखिए बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी।
1: बड़ा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ है और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ है,
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: शंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज की मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल,
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूं, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
2: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
2: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यासी छपा है
1: जी,
2: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाज आई है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
2: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरू हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
2: आ जाता
1: तो
2: है।
1: ललित निबंध

0: की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
1: एक तो हमारे यहाँ लिखबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भेष पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
0: जी, जी।
1: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
0: हाँ।
1: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं। साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
0: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: जी जी जी,
0: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाए, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाए, पाठक से जोड़ पाए, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु।

0: और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अजाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।

0: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है।

0: और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा बहुत पढ़ेगा वही ललित निबंध लिख पाएगा, जो कम पढ़ता है कम सोचता है जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
0: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
0: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
0: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी।
0: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
1: जी।
0: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
0: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो। बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी।
0: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
0: मध्य क्षामा चकित हृदय प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबाधरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
0: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार कौधा और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, बंद हो गया था हर जगह, सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंताग्री जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी

0: परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाऊँ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
1: अच्छा,
0: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
1: जी
0: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को।
1: जी
0: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
1: जी।
0: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
1: जी।
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्स मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी, बिल्कुल।
0: आप कहें तो उसको मैं 2 लाइनें उसकी
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रायडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती है। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी की प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और

0: प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
1: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
0: जी।
1: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
0: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका न होना हमें बहुत खलता है, खैर ये प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकार की भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था। तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएँ
1: जी,
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
1: अच्छा,
0: उनकी पुत्र वधू ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान हो करके अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी।
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरे गीत अमर कर दो,
0: ये मुझे बहुत पसंद है।
1: बहुत सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन जी।

0: राइडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रहे हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूँ और पक्षधर हूँ कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थीं, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं
0: जी।
1: ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियाँ नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएँ, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएँ। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, ये योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है
0: जी।
1: जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगी, उनकी जो पात्र हैं, वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं, उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है, और इस तरह से वो

0: सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्थिति इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी उमदा के जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ज़बरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ। तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल से,
1: क्या बात है,
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का अपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन

0: के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओ लीजिए अब सुनिए फिल्म संकेत। जावेद अख्तर की रचना हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं शंकर एहसान लॉय की तर्ज में, क्यों हो गया ना। इस फिल्म के गीत में आवाजें हैं साधना सरगम और उदित नारायण की।

केके की आवाज में वो लम्हे फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

Hello, my dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. There is no place like home. Ghar hi swarg hai. Ek shantipurna ghar kaise banaye? This all depends on the people living in the house. Aisa ghar banane ka kya matlab hai, jisme hamare bacche ghar aakar khush ho. Hum sabhi इस पागल दुनिया में सुरक्षा की जगह पाने की कोशिश करते हैं और ये एक स्टाइलिश लिविंग रूम बनाने से कहीं ज्यादा है। हम अपने घर में ठोस शांति चाहते हैं। हम उसे बुद्धिमान महिला की तरह बनाना चाहते हैं जो अपना घर बनाती है। एक सुकून देने वाला आश्रय, एक आरामदायक आश्रय। हम किससे आनंददायक हंसी से भरा घर बनाते हैं। आज की संस्कृति में तेज चलना अच्छा है और धीमा चलना बुरा। हर दिन

भागदौड़ करना आम बात है। इसके चलते तनाव तो रोज होती ही होती है। प्यार, अपनापन और सुकून का एहसास, ड्रीम हाउस की ये है पहचान। हर गलती माफ हो और हर खुशी साझा की जाए। घर को सपनों का आशियाना बनाने के लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य कुछ खास आदतें और नियमों को अपनाएं। ये नियम न केवल रिश्तों को मजबूत करेंगे बल्कि घर के माहौल को भी खुशनुमा और सकारात्मक बनाएंगे। ऐसे फैमिली में बच्चों का मानसिक शारीरिक ग्रोथ भी काफी अच्छा होता है। घर में ऐसा माहौल हो कि हर सदस्य अपनी बात खुलकर बताए और सभी उसकी हर बात को ध्यान से सुने, बिना टोके अपनी बात रखने पर उसे जज ना करें। ये आदत पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाती है। हर इंसान से गलतियां होती है, किसी की गलती पर उसे जज करने के बजाय प्यार और समझदारी से सही रास्ता दिखाए। जज करने से रिश्ते में दूरियां आने लगती है। परिवार का हर सदस्य अगर कुछ अच्छा करता है या कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है तो उसके प्रयासों को भी सराहें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और घर का माहौल सकारात्मक रहता है। दिन में कुछ वक्त ऐसा तय करें जब सभी सदस्य एक साथ रहें, जैसे रात का खाना या शाम की चाय। यह परिवार को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इस समय उन बातों को इग्नोर करें जिस पर बहस या मतभेद हो सके। हर सदस्य की अलग अलग जरूरतें होती हैं। उन्हें समझने की कोशिश करें और उनका सम्मान करें। ये समझो कि हो सकता है कि आपके लिए वो चीजें मायने न रखती है, लेकिन किसी दूसरे की खुशी के लिए उसका होना जरूरी हो सकता है। बिना वजह हर बात पर रोक टोक करने से घर का माहौल बोझिल हो सकता है। बच्चों और बड़ों को उनकी उम्र और समझ के अनुसार आजादी दें। अगर आप हर वक्त बच्चों या अन्य लोगों को टोकते रहेंगे तो उनके मन में आपके प्रति इरिटेशन भाव पैदा होगा। घर में किसी भी तरह के विवाद को बिना चीख चिल्लाए सुलझाना जरूरी है। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं और गुस्सा आ रहा है तो बेहतर होगा कि ब्रेक ले और पहले खुद को शांत कर ले। हर बार बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालें। अपनी खुशी, दुख, गुस्सा और डर जैसी भावनाओं को परिवार के साथ साझा करें। इससे रिश्ते में और गहराई आती है, वे आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat feedbackamc1@gmail.com। हर दिन के लिए अपने परिवार के साथ बिताए समय के लिए और उनके योगदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। फिर वह आपकी पत्नी हो, माँ हो, पिता हो या बच्चे हो। अगर आप इन रूल्स को फॉलो तो आपका घर सच में सपनों का आशियाना बन सकता है। याद रखें, प्यार और समझदारी ही एक परिवार की असली नींव है। घर एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति को सुकून और आराम चाहिए होता है। ऐसे में हाउ टू हैव अ हैप्पी एनवायरनमेंट एट होम, घर में खुशहाल वातावरण कैसे बनाए, इस पर विचार करना है। क्योंकि ये हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि जब शाम को घर में थका हारा आए तो उसे एक अच्छा माहौल मिले, एक खुशनुमा माहौल मिले, मन की शांति मिले जिसमें रहकर वह अपने सारे दुख और दर्द को भूल जाए। घर के माहौल को अच्छा करना वैसा तो सबकी जिम्मेदारी होती है, फिर भी इसमें महिलाएं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है। क्योंकि मकान को घर तो एक महिला ही बनाती है। और सोच के देखिए, जब कभी दो दिन के लिए आप घर से बाहर चली जाती है तो आपके घर का क्या हाल होता है। घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति का स्वभाव, रहन सहन, बोल चाल सब मायने रखती है। और आप अपने घर को कितने अच्छे से रख पा रही है ये बिल्कुल आप पर ही निर्भर करता है। एक बात तो ये सच है कि कभी कभी गुस्सा आप किसी और के कारण होते हैं और

आपका गुस्सा कहीं और निकल जाता है। जैसे आप ऑफिस के बॉस से कुछ गुस्से में आकर बात करते हैं, या आप ऑफिस से बॉस की डांट को पहले से सुनकर आए हैं, और जब आप शाम को थके हारे परेशान घर आए तो अपने बेडरूम को पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखा, तो ऐसे में ऑफिस का गुस्सा आप अपने वाइफ या घर के अन्य लोगों पर निकालेंगे। और यदि इसका उल्टा है, आप ऑफिस से तो परेशान हो पर जब आप घर में अपने बेडरूम में जाते हैं तो आपका सब कुछ परफेक्ट दिखता है, तो शायद आप अपने ऑफिस की गुस्से को मैनेज कर लेते हैं। हर बात कहीं ना कहीं किसी बात का कारण होता है। बिना रीजन के माहौल कभी खराब नहीं होता है, बस आपको पहले से स्मार्टली चीजों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, जिससे आपके घर का माहौल हमेशा शांत रहे। ध्यान रखिए कि आपके किचन में बर्तन का ढेर न लगे हो, थोड़े थोड़े बर्तन को साफ करते रहिए, और यदि आपके मेट करती है तो बर्तन को एक अलग जगह पर लगाए। किचन हमेशा साफ सुथरा रखे, जिससे यदि आप घर में नहीं भी हो तो आपके अन्य घर वाले कुछ ना कुछ बनाकर खाकर उसे मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, ये तो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये टिप्स आप फॉलो करके आपके घर को आप एक स्वर्ग बना सकती है। ये सब आपके हाथों में है। Everything is in your hands. With this wonderful information about how to create a very happy and a peaceful home environment, this is Chetan saying bye in today's Lamhe program. अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Call or messages on 09515227039, that's 09515227039, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।

0: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओ, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की।
0: जी,
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
0: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
0: जी,
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
0: जी,
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेले,
2: कभी कबड्डी खो खो खेले,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,

0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।

0: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
1: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
0: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए।

0: पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्स-रे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे। अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ,

0: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
1: गुड मॉर्निंग, आइए आइए आइए।
0: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
0: अच्छा अच्छा।
1: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
2: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं।

0: अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
2: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
1: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 वजन वाले ने हुन तो कुछ ही पलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार रिले करांगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन

0: अभी जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: श्रोतियों होने गीत तो अनु सुनवा रहे हैं आदि पुरुष फिल्म चो साचे टंडन परंपरा टंडन दी आवाज आज।

0: ਸਾਚੇ ਟੰਡਨ ਪਰੰਪਰਾ ਟੰਡਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के अम्बेसडर बनने का आह्वान किया। हरियाणा में प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीडन की कंपनी आइकिया ने हरियाणा में नई परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा जताई। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जुलाई तक हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिति का मुख्य कार्य किसानों से संपर्क करना, उनके खेत पर जाना और सरकार से तालमेल करा के प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना होगा। समिति के सदस्य एक तरह से प्राकृतिक खेती के प्रेरक अम्बेसडर होंगे।
2: आज हम प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान योजना को शुरू कर रहे हैं। श्री अन्न को हम भगवान का रूप मानते हैं। इसकी हर जिला के अंदर कमेटी बनेगी और आप इसका पूरा लगातार किसानों के साथ संपर्क भी, उनसे बातचीत भी लिए। हमने प्रेरक अम्बेसडर बनाने हैं, उसको लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप सब से केवल प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह नहीं कर रहा, किसान भाइयों एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान कर रहा हूँ।
1: मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के ब्रांड अम्बेसडर बनने का आह्वान करते हुए कहा कि अब केवल चिंतन नहीं बल्कि अमल करने और दूसरों को प्रेरित करने का समय है। उन्होंने किसानों से मिले सुझावों को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने का आश्वासन भी दिया।
2: आप लोगों की तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण बातें प्राकृतिक खेती को लेकर के रखी गई हैं। आपके सुझाव भी आए हैं साथियों। ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का अभियान है। जो रिश्ता टूट गया था, प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी।
1: मुख्य

0: मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले उन किसानों को सब्सिडी जारी करने के निर्देश दिए जिन्होंने गाय खरीदने हेतु सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती, धरती माता की सेवा, खेती की लागत कम करने, जल और मिट्टी के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर किसानों से सीधा संवाद करेगी और प्राकृतिक खेती के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पर प्रत्येक माह इसी प्रकार के संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की उपज की बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आज पंचकुला में किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा तथा हैफेड इसकी खरीद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य में 4 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और गन्नौर मंडी में अलग शेड भी बनाया गया है।
1: गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी तैयार हो रही है। एक पूरा शेड तो किसान के लिए रिजर्व किया है कि किसान अपनी फसल लेकर के आए, एसी वो उसको पीछे रूम मिलेगा और वो अपनी फसल को बेचे, अगर बच गई तो पीछे एसी में रख दे कमरे में, अगले दिन आएगा बेच ले, खराब भी नहीं होगी। उसको तो हमने कम्प्लीट भी कर दिया जो किसानों को शेड देना है, परंतु जब वो मंडी स्टार्ट होगी तो तभी हम उसको अलाउ करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्राकृतिक खेती सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगी। इसके लिए सरकार और किसानों को मिलकर जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को कर्ज मुक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का प्रभावी माध्यम है। आज पंचकुला में प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती में किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि रसायन बनाने वाली कंपनियों के पास चला जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम होने से खेती की लागत घटती है और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में आईकिया इंडिया के सीईओ पैट्रिक एंटोनी के नेतृत्व में आए स्वीडन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा और आईकिया के बीच सहयोग को मजबूत करने और राज्य में भविष्य के निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। स्वीडन की होम फर्निशिंग कंपनी आईकिया के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। बैठक के दौरान पैट्रिक एंटोनी ने हरियाणा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में आईकिया की गहरी दिलचस्पी और नई परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्रगतिशील नीतियों, उद्योग अनुकूल इकोसिस्टम और सक्रिय प्रशासन ने वैश्विक कंपनियों के लिए निवेश करने और आगे बढ़ने का अनुकूल माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सहज और निवेशक अनुकूल व्यापार का माहौल प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। गौरतलब है कि यह कंपनी पहले से ही गुरुग्राम में अपनी बड़ी परियोजना के जरिए हरियाणा में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस परियोजना से लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लगभग 10 एकड़ में फैली यह परियोजना भारत में आईकिया के प्रमुख निवेशों में से एक होगा, जो एक ही जगह पर रिटेल, ऑफिस स्पेस और सामुदायिक केंद्रित अनुभवों को एक साथ लाएगी। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 से 9 जुलाई तक कई जगहों पर, 10 से 12 जुलाई तक कुछ जगहों पर और 13 जुलाई को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 7 से 9 जुलाई और 11 से 12 जुलाई के बीच इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल तक ऑरेंज अलर्ट और 10 से 12 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पंजाब के लिए आज से 12 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत फंड किए जाने वाली संरचना परियोजनाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और सार्वभौमिक सुलभता के मानकों का

0: पालन अनिवार्य करने का फैसला किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में कहा कि इससे निर्माण के बाद महंगे बदलाव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शुरुआत से ही सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को अपनाने से ऐसी संरचना बनाने में मदद मिलेगी जो समावेशी, टिकाऊ और हर नागरिक के लिए सुलभ हो। उन्होंने आगे कहा कि सार्वभौमिक सुलभता सिर्फ दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अस्थायी रूप से चलने फिरने में दिक्कत महसूस करने वाले लोगों को भी फायदा होता है। कुरुक्षेत्र जिले में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR का लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार ने बताया कि 15 जून से 7 जुलाई तक जिले में 98% फार्म का वितरण हो चुका है।
1: हमारा SIR यहाँ पे 15 जून से स्टार्ट हुआ था और 15 जून से आज 7 जुलाई तक हमारा 98% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और जिसमें से 69.15 वापिस आ चुके हैं और BLO द्वारा डिजिटाइज किया गया है। अगर हम विधानसभा क्षेत्र वाइज देखें तो 11 लाडवा में हमारा जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म डिजिटाइज 76.27 हो गए हैं, 12 शाहबाद में 81.90, 13 थानेसर में 53.93, पेवा में 68.06 हो चुका है। हमारे BLOs घर घर विजिट कर रहे हैं।
0: उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना फार्म नहीं भर पा रहा तो BLO द्वारा उनकी मदद की जा रही है। इसके अलावा चारों विधानसभा क्षेत्र के SDM कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है जहां पर कोई मतदाता अपने विवरण की जांच करवा सकता है। चुनाव कार्यालय में भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के एम्बेसडर बनने का आह्वान किया। हरियाणा में प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीडन की कंपनी IKEA ने हरियाणा में नई परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा जताई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्रीय रेल राज मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने पंजाब का दौरा करेंगे और जलंधर समेत सूबे च कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। NRI मामलों बारे विभाग ने ऑनलाइन NRI मिलने का आयोजन किया, मंत्री वालों अधिकारियों तुरंत कार्रवाई के निर्देश। पशु पालन मंत्री गुरमीत सिंह कुड़िया वालों विभाग ने 30 जुलाई तक पशुधन का टीकाकरण करने की हिदायत। अमरीका के संघी जांच ब्यूरो वालों पंजाब पुलिस के एक अधिकारी खिलाफ जबरन वसूली के बयान का नोटिस लेंदा, पंजाब पुलिस ने उसे तुरंत प्रभाव नाल लाइन हाजिर किया। पंजाब पुलिस ने अज अमृतसर में 3 मुलजमान तो 12 आधुनिक पिस्तौलों और 6 हथगोले बरामद किए। मौसम विभाग वालों अगले 2 दिन लिए पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी मीह पैण बारे येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय रेल राज मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में पंजाब का दौरा करेंगे और सूबे में और महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के साथ साथ पुनर्विकसित जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 70 से 75 मुकम्मल हुए अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन जलंधर छावनी स्टेशन तो वर्चुअल माध्यम राही करेंगे। उन्होंने कहा
3: रेलवे का अमृत भारत साडे देश के प्रधानमंत्री ने 1500 रेलवे स्टेशन एक बारी उन्होंने बनाने लई रीवैम्प रीडिवेलपमेंट करने लई उन्होंने फैसला किया। असी तकरीबन 70 से 75 स्टेशन जिहड़े कंप्लीट हो चुके ने वो चुने ने सारे देश दे विच। ओ हजारां करोड़ रुपए दे ओ जिहड़े रेलवे स्टेशन ने जिहड़े कि अज एयरपोर्ट तो घट नहीं आ, प्रधानमंत्री उन्होंने उद्घाटन करेंगे। हजे तक टेंटेटिव डेट है जिहड़ी ओ 17 है, प्रधानमंत्री आप आएंगे ते सारे 70 से 75 स्टेशनों का जिहड़ा वर्चुअल उद्घाटन बाकी जगह दा उरे करेंगे।
2: अज स्टेशन की तैयारियों का जायजा लैन तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदिया उन्होंने कहा कि इस 110 साल पुराने स्टेशन 125 करोड़ रुपए की लागत नाल अमृत भारत स्टेशन योजना तहत विश्व पद्धरी सहूलत विच बदलिया गया। आकाशवाणी पत्रकार ने दसिया कि जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन हर रोज लगभग 7500 यात्रियों की सेवा कर रहा है क्योंकि इस विचों लगभग 66 जोड़े रेलगड्डिया लंघदिया ने जो लोगों को देश के वख-वख हिस्सों नाल जोड़दिया ने। राष्ट्रीय महिला कमिशन ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल नाबालिग लड़की

0: 12 आधुनिक पिस्तौल ते 6 हथगोले बरामद कीते ने। ओ पाकिस्तान दी आईएसआई ते विदेश अदालत बबर खालसा इंटरनेशनल दे कारकुनां वल्लों समर्थ एक गैर कानूनी हथियारां ते विस्फोटक तस्करी मॉड्यूल दा हिस्सा सन। पुलिस सूत्रां ने दस्सिया कि नौजवान नूं सरहदी सूबे पंजाब च जनतक शांति भंग करन दे उद्देश नाल गतिविधियां करन लई एक खेप मिली सी। मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई जारी है। अमृतसर विच इस हफ्ते दौरान हथियारां ते गोला बारूद दी एक तीजी बरामदगी हुई है। इस तों पहलां पुलिस ने 2 मुलजमां तों गोला बारूद समेत 7 पिस्तौलां भी जब्त कीतियां सन। मौसम विभाग ने पंजाब के कुछ इलाकों और चंडीगढ़ में 9 जुलाई तक भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। इस तों इलावा 11 ते 12 जुलाई नूं भी इन्हां खेतरां विच भारी मीह पैण की संभावना जताई गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान फरीदकोट समेत कई थावां ते दरमियानी बारिश हुई। अज दर्ज किए गए वो तापमान च फरीदकोट 38.9 डिग्री सैलसीयस से हरियाणा का सिरसा 36.2 डिग्री सैलसीयस नाल सब तो गर्म शहर रहे। चंडीगढ़ में वो तापमान 32 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। ते आखिर विच खास खबरां एक बार फिर तो केंद्रीय रेल राज मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने पंजाब का दौरा करेंगे और जलंधर समेत सूबे विच कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। एनआरआई मामलों बारे विभाग ने ऑनलाइन एनआरआई मिलने का आयोजन किया। मंत्री वालों अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश। पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह कुडिया वालों विभाग को 3 जुलाई तक पशुधन का टीकाकरण करने के निर्देश। अमरीका के संघी जांच ब्यूरो वालों पंजाब पुलिस के एक अधिकारी खिलाफ जबरन वसूली के बयान का नोटिस लिया। पंजाब पुलिस ने उसे तुरंत प्रभाव न लाइन हाजिर किया। पंजाब पुलिस ने आज अमृतसर विच 3 मुलजमान तो 12 आधुनिक पिस्तौल ते 6 हथगोले बरामद किए। मौसम विभाग वालों अगले 2 दिन लई पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भारी मीह पैण बारे येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी। इस तों नाल ही प्रदेशक खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 7:03। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 94 ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੂਹੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਨਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਓ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਉਡਾਰੀਆਂ।

कार्यक्रम जय माला लेकर हम हाजिर हो गए हैं। हमारे सभी फौजी साथियों का ये कार्यक्रम है। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। जय हिंद साथियों। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म केसरी से। बी प्राक की आवाज है, मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा है, आरको का संगीत है।

0: कार्यक्रम जयमाला की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया एक देशभक्ति गीत बी प्राक की आवाज में। अब सुनिए भारतीय सेना गीत। गायक कलाकार, गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: Cesena.
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनके साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आपको सुनवाते हैं फिल्म उत्सव का ये गीत। इस गीत को गाया है सुरेश वाडकर ने। वसंत देव के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सनी से हम सुनवा रहे हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आपको अगला गीत सुनवाते हैं साहिब फिल्म से। अनजान की बोल हैं, संगीतकार बप्पी लहरी हैं और किशोर कुमार साथियों के स्वरों में ये गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम जयमाला में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

अंतराल के बाद आप सभी साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम जयमाला में बहुत स्वागत है। सोनी महिवाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत। अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल हैं खय्याम का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला और अब कार्यक्रम का ये आखिरी गीत रेफ्यूजी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर हैं, जावेद अख्तर की रचना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम रेफ्यूजी।

ये गीत बना इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए साथियों, जय हिंद, और आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम।

आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं अरविंद नीमा की लिखी नाटिका नैहर छूटो जाए। निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा।

0: कौन है? अंदर आ जाओ।
1: अरे कृष्णन बेटा तुम?
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बड़े दिनों में आए। मैं तो समझती थी कि तुम हमें भूल ही गए।
2: अरे नहीं, भूलूंगा क्यों, बस मरीजों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। आज मिली तो सीधा आपके दर्शनों को चला आया।
1: आओ बैठो बैठो, कैसे हो?
2: ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है?
1: अब तो एकदम ठीक है। लगता ही नहीं है कि कभी इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था।
2: और उस समय कितना डर गई थी आप?
1: अब बेटा, पहले कभी तो ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, और ऊपर से ये शहर वाले डॉक्टर बहुत डरा दिया था। बात तो सच ये है कि वो सब तेरे ही हाथ का हुनर था, जो 5 महीने में मैं एकदम ठीक हो गई।
2: हुनर मेरा कैसा, ये तो बड़े बूढ़ों का आशीष है।
1: हाँ, वो तो है ही, पर अब बड़े बूढ़ों के लिए एक बहू भी ले आओ।
2: हाँ अब यही चल रहा है।
1: कोई लड़की वड़की देखी है क्या?
2: हाँ लड़की तो पसंद आ गई, देखें आगे क्या होता है।
1: लड़की पसंद कर ली तो अब क्या होने को है?
2: अरे हाँ मम्मी, वसुधा नहीं दिखाई दे रही।
1: लाइब्रेरी गई है।
2: अच्छा, उसकी शादी कब कर रही हूँ?
1: वसुधा के पापा इसी सिलसिले में उदयपुर गए हुए हैं।
2: हाँ।
1: अगर रिश्ता तय हो गया तो सबसे पहले तुम्हें ही मिठाई खिलाऊंगी। हाँ। बेटा
2: अच्छा, फिर तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी।
1: तैयारी?
2: हाँ।
1: कैसी तैयारी?
2: मिठाई पचाने की।
1: अच्छा अच्छा। हाँ। बोलो, चाय पियोगे या कॉफी बनाऊ?
2: नहीं मम्मी, इसकी तकलीफ मत करो।
1: अरे तकलीफ काहे की, तुम ही तो कहते हो कि अगर सदा निरोगी रहना है तो बिस्तर पकड़ कर मत बैठे रहना, घर के काम काज करते रहना, और अब आज खुद ही।
2: अच्छा अच्छा, तो चाय ठीक रहे।
1: अभी लाई। आ गई वसुधा?
3: हाँ मम्मी।
1: आज कृष्णन आया था।
3: कब?
1: दोपहर में।
3: कैसे आए थे?
1: यूं ही मिलने चला आया था। बड़ा ही संस्कारी लड़का है।
3: अच्छा मम्मी, तुम्हें उस दिन की बात याद है जब तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही थी?
1: याद क्यों नहीं बेटा, उस दिन तो एक तरह से मेरा पुनर्जन्म ही हुआ था।

0: उस दिन तुम्हें गेट तक छोड़ने के लिए कृष्णन भी तो आए थे।
1: हाँ हाँ आया था ना।
0: तब तुमने उससे जो कहा था वो याद है तुम्हें?
1: अच्छी तरह याद है। मैंने कहा था वो लड़की बड़ी सौभाग्यशालिनी होगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है?
0: क्योंकि क्योंकि मम्मी उसकी पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हारी ही बेटी को।
1: वसुधा
0: क्या हुआ मम्मी, खुशी की बात पर भी गुस्सा क्यों होती हो?
1: तेरा दिमाग तो ठीक है ना?
0: मम्मी जब मैं कॉलेज जाने लगी थी तब तुमने कहा कि तुम मेरी मम्मी के साथ साथ मेरी सहेली भी हो, कहा था ना?
1: तो
0: मैं आज अपनी उसी सहेली से अपने मन की बातें कर रही हूँ। मेरी बात सहेली की तरह सुनो ना मम्मी, प्लीज मम्मी गुस्सा मत करो प्लीज।
1: वसुधा ठीक ठीक बात कर।
0: मम्मी कृष्णन मुझे हर तरह से अच्छे लगते हैं। आज वो कॉलेज आए थे और मुझसे पूछा कि क्या मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ।
1: हाँ, और तुमने अपना विवाह तय कर लिया?
0: नहीं मम्मी, तय तो आप और पापा ही करेंगे। मैंने तो तुम्हें अपने और कृष्णन के विचार बताए हैं। कृष्णन को जवाब तो आप ही को देना है।
1: तो मेरा उत्तर एकदम ना है।
0: ये क्या मम्मी, इतने बड़े मामले पर तुमने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया, कुछ तो विचार करिए।
1: अब विचार क्या करना है? कृष्णन अपनी जाति का नहीं है बस।
0: ओह मम्मी, अच्छे लड़के के लिए आप 2 सालों से कितनी दौड़ धूप कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं आप लोग, और जब वो मिल गया तो जाति बिरादरी के झंझट में उलझी।
1: वसुधा तेरी बातों से विद्रोह झलक रहा है।
0: विद्रोह नहीं मम्मी, कुएं से निकलकर विशाल सागर को अपनाने की विचारधारा है ये। अब देखो ना मम्मी, मेरे लिए लड़का चुनने के लिए आपके सामने ये बंधन है कि अपनी जाति के सीमित लड़कों में से ही किसी एक का चुनाव करो, और फिर चाहे वो योग्य हो या ना हो, मुंह खोलकर लंबा चौड़ा दहेज मांगते हैं, लड़की के माँ बाप से अनुचित मांगे करते रहते हैं। ये कैसी विडंबना है कि सारी बुराई के होते हुए भी लड़के इसीलिए स्वीकार किए जाते हैं कि वो अपनी जाति के विशेष हैं, और सीधा सरल और सुयोग्य कृष्णन इसलिए त्याज्य कि वो अपनी जाति का नहीं है। कैसी बात करती हो मम्मी।
1: नहीं बेटा, कुछ भी हो जाति में इज्जत तो रहती है।
0: इज्जत? वाह मम्मी, तुम्हारी लड़कियां दहेज की आग में जलेंगी, लड़के वालों के दरवाजे से अपमानित होते रहना तो भी उफ ना करना, और वो कृष्णन तुम्हें पूरे सम्मान से बिना दहेज तुम्हारी लड़की को पत्नी बना रहे हैं, तो तुम्हें ये स्वीकार नहीं, ये गलत है मम्मी।
1: नहीं नहीं, इसमें गलत क्या है, ये तो सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज है।
0: चले आ रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तमाम बुराइयों के होते हुए भी चलते रहना चाहिए। मम्मी अगर तुम मुझे सुयोग्य हाथों में देना चाहती हो तो तुम्हें ये सड़ी गली मान्यताएं तोड़नी ही होंगी, और फिर ये अटल सत्य है कि मेरे लिए कृष्णन से सुयोग्य और कोई नहीं होगा।
1: वसुधा तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा जो लड़का देखने उदयपुर गए हैं वो लड़का भी डॉक्टर ही है।
0: डॉक्टर है तभी तो खूब दहेज मांगेगा, और पापा की सामर्थ्य से वो बाहर होगा, वो अपमानित होकर लौट आएंगे।
1: तो तुझे उससे क्या मतलब?
0: मुझे मतलब क्यों नहीं, मेरे पापा दर दर भटकेंगे, अपमानित होकर लौटेंगे, और मुझे कोई मतलब नहीं। जिन पापा ने मुझे जन्म दिया, मुझे शिक्षा की अमूल्य दौलत दी, खुद दुख उठाकर मेरी इच्छाएं पूरी की, उनके अपमान से मुझे दुख नहीं होगा मम्मी। क्यों मुझ में भावनाएं नहीं है? ये आपने कैसे सोच लिया मम्मी कि मुझे कोई मतलब नहीं है? आप कैसे सोचती हैं मम्मी ऐसा?
1: नहीं नहीं बस रो मत बेटी, रो मत। मैं तो कह रही थी तुझे अच्छा घर और बर देने के लिए अगर हमें कुछ तकलीफ या अपमान भी सहना पड़े तो हम वो भी सह लेंगे।
0: और आपको परेशान अपमानित देखकर भी मैं अपनी गृहस्थी में खुश रह सकूंगी, यही ना?
1: एक तरफ से यही समझ ले।
0: नहीं मम्मी, ढेर सारा दहेज देकर मेरे लिए वर खरीदने की कोशिश में कर्ज के बोझ तले मत दबो। मुझे तो ऐसी शादी करनी है जिसका आधार प्रेम हो, लालच नहीं, सम्मान हो, अपमान नहीं।
1: बेटा वसुधा, प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते।
0: वो अंधा प्रेम होता है मम्मी जो क्षणिक आवेग में किया जाता है। मैंने तो बड़े सोच विचार के बाद कृष्णन जैसे व्यक्तित्व को स्वीकारा है, और फिर कृष्णन को तो तुम भी संस्कारी लड़का मानती हो ना मम्मी?
1: तुम ये सारी बातें अपने पापा को भी समझा पाओगी वसुधा?
0: जहां तक हो सके तुम ही समझा दो ना मम्मी, वरना मुझे तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी।

0: पापा।
1: ओ वसुधा आओ बेटे।
0: पापा आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही जरा लाइट चालू करने में आलस कर गया था। ठहरो मैं अभी जलाता हूँ।
0: आप रहने दो मैं जला देती हूँ। अब बताओ पापा आप क्या सोच रहे थे?
1: मैं कुछ भी तो नहीं।
0: नहीं पापा मुझसे छुपाओ मत। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं क्योंकि मैंने मम्मी से कृष्णन के लिए बहस की।
1: अरे मैं तो उसके लिए तुम पर गर्व करता हूँ कि तुमने अपनी आसपास की घटनाओं से इतना कुछ सीख लिया है और अपने पापा की परेशानी को समझा। फिर भी बेटा तूने गलत कहाँ कहा था। उदयपुर वालों ने सीधे 15 तोले सोना, घर की सजावट का सामान और 10,000 रुपये नगद की मांग कर ली। और इस पर भी ये सुझाव कि बारात 3-स्टार होटल में ही ठहरेगी।
0: ये सब इसलिए ना पापा कि लड़कियों के माँ बाप को जाति बिरादरी के सीमित लड़कों में से ही किसी को चुनना पड़ता है। अब लड़के के पिता सोचते हैं अपने लड़कों की मांग अधिक है इसलिए उनके भाव बढ़ा दो। इस तरह विवाह को उन्होंने व्यवसाय बना लिया। अब पापा क्या हम उनकी अनुचित मांग के आगे सर झुका दें, विवाह को व्यवसायिक होने दें? क्या हम चुपचाप सब सहते रहें?
1: नहीं नहीं बेटा हमें तो विरोध करना चाहिए।
0: तो फिर पापा आप कृष्णन को स्वीकार कर लेना।
1: कर तो लो बेटी पर लोग क्या कहेंगे?
0: लोग तो उस समय कहेंगे जब आपके विरोध के होते हुए भी मैं अपना घर बसाऊं। अगर आप अपने हाथों सहर्ष कर देंगे तो कोई क्या कहेगा? और फिर भी कहे तो आपके पास उत्तर होगा।
1: क्या?
0: यही कि आपने मेरी खुशी के लिए ये सब किया है।
1: पर बेटे
0: ना तो... पापा अब आप कमजोर मत पड़िए प्लीज। हाँ कर दीजिए ना पापा, मेरी खुशी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज पापा।
1: ठीक है बेटे मैं कृष्णन से मिलूंगा बस।
0: पापा आप बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा अच्छे पापा। और नहीं मिलूं तो? तो श्रीमती वसुधा कृष्णन क्या कहेंगी?
0: तब भी वसुधा यही कहेगी कि पापा बहुत अच्छे हैं।

नैहर छूटो जाए। अभी आपने अरविंद नीमा द्वारा लिखित यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे जटाशंकर शर्मा। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल अब समाप्त होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ।

0: आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत करती हूँ। मैं पूजा नारायणिया, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला गीत दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत हम आपकी है कौन फिल्म का, लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें। देव कोहली की गीत रचना है और राम लक्ष्मण का संगीत।

दिल चाहता है फिल्म का गीत सुनिए, शान और कविता सुब्रमण्यम की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: दिल चाहता है फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल तो पागल है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस गीत को गाया है, लिखा है आनंद बख्शी ने और उत्तम सिंह ने धुन बनाई है।

सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गीत, फिल्म का नाम है चमेली, इरशाद कामिल के बोल हैं, संदेश चांडिल्य का संगीत।

0: फिल्म चमेली से ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की, और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता उबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा

0: गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
4: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी

0: बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
2: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में

0: गठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युप और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
2: सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, फिल्म का नाम अनुरोध।

श्रोताओं, कल कार्यक्रम आज के फनकार सुबह 9:30 पर केंद्रित रहेगा फिल्मकार गुरुदत्त पर, और रात 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेता संजीव कुमार पर। आप जरूर सुनिएगा आज 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित है, क्योंकि आज है अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत बैराग फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
6: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आपको सुनवा रहे हैं अब आनंद बख्शी के बोलो को सुरों में ढाला है एसडी बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने ये गीत फिल्म चुपके चुपके से।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चरस से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में सुनिए उपासना फिल्म का ये गीत, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर।

अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, चितचोर इस फिल्म का गीत येसुदास और हेमलता की आवाजों में। इस गीत के गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार, आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।
1: बच्चे

नीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए, जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की इस शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू।

इस गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे, ढोंगी।

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन, द

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा, काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का,

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की, और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना है।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन क्षय गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती भारत का गम एक्सपर्ट।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्रेम कभी भी अग्नि परीक्षा नहीं बनना चाहिए, ना ही उसे समर्पण के प्रमाण देने पड़े कभी। क्यों है ना? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते, केवल एक प्रवाह रह जाता है बस।
1: तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिल

कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम बदल गया, प्रेम करने वाला बदल गया, पर शायद प्रेम नहीं बदलता। उसके साथ जुड़ी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसके साथ जुड़ी उम्मीदें बदल जाती हैं।

0: कभी कभी हमारे भीतर जो चलता है वो शब्दों में कम और खामोशी में ज्यादा होता है। हमारा मन बहुत परतों में बटा होता है। ऊपर ऊपर हंसते हुए भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, थके हुए से, चुप चुप और कभी कभी बेहद अकेले भी।
1: कभी

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एकांत के। हाँ, बस चार दीवारें, एक खिड़की, छोटा सा रोशनदान, हल्की सी रोशनी और भीतर की आवाजें। हाँ, भीतर की आवाजें अच्छी लगती हैं तब, क्योंकि वहां कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। बस अपने भीतर के उन हिस्सों को हम सुन सकते हैं जिन्हें हमने वर्षों से टाल रखा होता है। तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते, बस अपने भीतर लौट रहे होते हैं।

एक उम्र के बाद शोर वाला नहीं सुकून वाला प्यार चाहिए होता है ना? ऐसा प्यार जो मुश्किलों से भागे नहीं, ऐसा प्यार जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में मौजूद हो, ऐसा प्यार जो आत्मा को थकाए नहीं, ऐसा प्यार जो हमको रुलाए नहीं बेवजह, ऐसा प्यार जो अच्छा नहीं बल्कि सही हो, हाँ बस सही हो।

0: कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और हर उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है और साथ ही बिखर जाती है हमारी जिंदगी भी।
1: तुझे इसकी खबर क्या, तुझे

0: अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्मरिक

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार

0: की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।